0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013

के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40-40 हजार रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, उड़ीसा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
5: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
4: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
6: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
7: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे

0: कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: एग्रीकल्चर एंड डिजिटल सर्विसेज।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
3: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात

0: पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हॉर्मुज जलडमुर मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हॉर्मुज जलडमुर मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज जलडमुर मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
1: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्र हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से PM मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी। खबरें राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान हॉर्मुज खोलने पर हुए सहमत। नवभारत टाइम्स

0: की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 8:40 हो चुके हैं और आज है 6 अगस्त 2026, दिन है गुरुवार का. कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान. तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैव ए वंडरफुल डे, नाइस डे. और इस कार्यक्रम में आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, थर्सडे का दिन है, तो एक खास, जी हाँ, एक खास सितारे को लेकर हम बात करेंगे और उन्हीं की चर्चा होगी और उन्हीं की फिल्मों के गाने आपको सुनवाएंगे. तो चलिए, कुछ दो तीन गाने मैं प्ले करूँगा बैक टू बैक और आप गेस करने की कोशिश करें कि आज के सितारे कौन होने वाले हैं. और व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बताएं आज के इस कार्यक्रम में जो सितारे हैं उनका नाम क्या हो सकता है. थोड़ा सा होमवर्क करें, गेस करें, माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर लें सुबह सुबह. एनीवे, बहुत ही खूबसूरत गीत आने वाले हैं किशोरदा की आवाज़. तो चलिए आगाज़ करते हैं.

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली।

0: योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जी हाँ, मुंबई सिटी सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं और आज है थर्सडे और कार्यक्रम मस्त मुंबई। और आज हम बात करने वाले हैं आज के एक खास सितारे के बारे में। और जैसा कि मैंने पूछा था कि आपको व्हाट्सएप के जरिए जवाब देना है, तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने देव साहब का नाम लिखा। हकीकत ये है कि देव साहब का मैजिक और उनका जो जादू है वो इतना ज़्यादा है, उनका जो दीवानापन है लोगों के दिलों में वो इतना ज़्यादा है कि उनके गाने सुनते ही सबसे पहले देव साहब का नाम ही आता है। लेकिन हमारे आज के सितारे देव साहब नहीं हैं, और वैसे तो वो हमेशा हमारे सितारे रहेंगे, लेकिन हमारे कुछ लिसनर्स ने जो गेस किया है वो काफ़ी हद तक सही है। जैसे बिहार से चेतन कुमार ने लिखा कि या तो एसटी बर्मन साहब हैं या मजरू सुल्तानपुरी हैं। और दीपा पालकर जी ने भी लगभग काफ़ी सही गेस किया, उनका भी जवाब यही है कि इन दोनों में से कोई एक हस्ती के बारे में आज बात होने वाली है। और मानखुर्द से प्रणव शिंदे जी ने भी सही लिखा कि या तो देव साहब हैं या एसडी बर्मन साहब हैं। तो आज हम संगीत की दुनिया के बादशाह एसडी बर्मन साहब के बारे में बात करेंगे और उन्हीं की फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे। तो चलिए, मुंबई का मौसम भी भीगा भागा है, एकदम बरसात हो रही है, बरसात का रंग पूरी तरह से छाया हुआ है, तो क्यों ना हो जाए किशोरदा की आवाज़ में कहीं एक खूबसूरत सी लड़की भीगी भागी। एनीवे, लव यू ऑल।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM रेनबो। बात कर रहे हैं संगीत

के बादशाह, सुरों के सुल्तान एस डी बर्मन साहब के बारे में। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1906 को त्रिपुरा में। उनका ताल्लुक था राजसी घराने से। जी हाँ, एक बहुत बड़े घराने में उनका जन्म हुआ। उनके पिता त्रिपुरा के महाराजा के बेटे थे, उनकी माता मणिपुर की राजकुमारी थी। देखिए कहाँ उनका जन्म हुआ। शायद उन्हें संगीत की दुनिया का सम्राट बनना था। कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की और संगीत की दुनिया में उन्होंने सितार वादन के साथ कदम रखा। जी हाँ, उन्होंने सितार वादन के साथ अपना करियर शुरू किया, यानी पहले सितार बजाना सीखा। 1932 में कोलकाता रेडियो स्टेशन से उन्होंने एक सिंगर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। और शुरू में वो, मैं बताना चाहूँगा आपको, कि बंगाली प्लेस किया करते थे और सिर्फ बंगाली में ही गाया करते थे। बाद में उन्होंने हिंदी फिल्मों में, हिंदी में भी कुछ गाने गाए और उनका अपना एक खास अलग अंदाज रहा हमेशा। तो चलिए, मुंबई में जो इस वक्त बरसात है और जो घटाएं छाई हुई हैं, तो उन्हीं के नाम एक प्यारा सा गीत, आशा जी की आवाज़।

दूसरे गायकों से एकदम अलग था। एक फोक स्टाइल की उनकी आवाज़ थी और उसी तरह से वो गाया करते थे और इसी वजह से वो सबसे अलग थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके संगीत में बंगाली लोक संगीत का जो प्रभाव था, जो टच था, वो अच्छा लगता था। उनके संगीत को दूसरों से अलग बनाता था, खास खास बनाता था। भारतीय सिनेमा के दो महान गायक रफ़ी साहब और किशोर दा के करियर में सचिन देव बर्मन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर आप रफ़ी साहब के और किशोर दा के गाए हुए गानों की लिस्ट बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि उन गानों में जो गाने बर्मन दादा ने संगीतबद्ध किए वो अपने आप में कहीं ना कहीं खास हैं, उनके करियर को एक खास टच देते हैं, एक खास मुकाम देते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और आपके जो भी सपने हैं वो सब सच हो जाएं। ये गाना कुछ आशा जी की आवाज़ में है और कुछ ऐसी ही भावना के साथ ये गाना बनाया गया था।

दोस्तों, सपनों की बात इस गाने में की गई थी और एक स्कॉलर ने कहा है कि जो लोग ज़्यादा सपने देखते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा कर गुजरते हैं। एनीवे, सपनों की ताकत इंसान को ज़िंदा रखती है और आगे बढ़ने की एक हिम्मत देती है, हौसला देती है। तो बात कर रहे थे पंचम दा के पिताश्री यानी SD बर्मन साहब के बारे में। और जैसे कहते हैं ना कि मुंबई का अपना एक ख़ास जादू है, एक ख़ास मैजिक है, और मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान के किसी भी शहर में ऐसा मैजिक नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उन्हें मुंबई रास नहीं आती है, और मुंबई में एक दशक से ज़्यादा समय तक रहने के बाद भी SD बर्मन साहब यहाँ पर रम नहीं पाए, घुल मिल नहीं पाए, और वो मुंबई छोड़कर वापस अपने कोलकाता जाना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, जाने से रोक दिया, और बाद में उनका भी अपना मन बदल गया और बस वो फिर यहीं के होकर रह गए। वाकई मुंबई का अपना जादू है। एक बार यश चोपड़ा साहब ने कहा था कि मुंबई में एक ख़ास तरह का इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन जब किसी को लग जाता है तो वो बस यहीं का होकर रह जाता है, वो कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहता। ऐसा है मुंबई का मैजिक, मुंबई की मोहब्बत। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, पता नहीं क्यों आज बरसात ही बार बार मेरे जहन में आ रही है वैसे भी, और SD बर्मन साहब के गाने हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो बरसात का एक और खूबसूरत सा गाना हो जाए।

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है,

पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

ओ मेरे माछी। जी हाँ दोस्तों, माछी शब्द बहुत ही खूबसूरत शब्द है और कहीं ना कहीं इसका हर जिंदगी से, हर दिल से, हर रिश्ते से ताल्लुक है। माझी यानी जो आपकी नैया को पार लगा दे। रास्ते में तकलीफें हैं, तूफान हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं और उन सब से आपको बचाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, वो इंसान माझी कहलाता है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत था और बात कर रहे हैं हम एस डी बर्मन साहब के बारे में। दोस्तों उनका ताल्लुक जैसा कि हम सभी जानते हैं कोलकाता से था और कोलकाता में क्रिकेट का नहीं फुटबॉल का कितना क्रेज़ है हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं और बर्मन दास साहब को भी फुटबॉल का बहुत शौक था। वो फुटबॉल का मैच देखना कभी नहीं छोड़ते थे, कभी नहीं भूलते थे। एक बार यूँ हुआ कि उनकी फेवरेट टीम एक मुकाबले में हार गई और वो बहुत दुखी हो गए, बहुत निराश हो गए जैसा अक्सर फैंस हो जाते हैं। और उस समय वो गुरुदत्त साहब की किसी फिल्म के लिए संगीत तैयार कर रहे थे तो उन्होंने गुरुदत्त साहब से कहा कि कोई दुख वाला गाना हो, यानी गम वाला गाना हो, सैड सॉन्ग हो तो मुझे बताएं, मैं आज उसका संगीत तैयार कर सकता हूँ। आप मुझे आज अगर हैप्पी मूड वाला कोई गाना देंगे तो मैं आज उसका संगीत तैयार नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा मन बहुत उदास है, बहुत दुखी है, मेरी फेवरेट टीम हार गई है, इसलिए आज मैं कोई खुशी वाला गाना नहीं बना सकता। तो ऐसे थे एस डी बर्मन साहब। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत और लता जी की आवाज़ है। ये गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, गौर से सुनिएगा और दिल से ईमानदारी से महसूस कीजिएगा।

0: स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:46 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की बरसात और साथ में FM रेनबो की गीत संगीत की महफिल और साथ में आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान और इन सब के साथ बर्मन दादा यानी SD बर्मन साहब की बातें और उनके गाने। वाकई में कितना अच्छा कम्बिनेशन है और ऐसा कम्बिनेशन होता है तो मज़ा आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि रविन आप तो अपनी खुद की कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, आप सब मेरी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं और मेरे लिए इतनी तारीफ काफ़ी है। तो बात कर रहे थे ST बर्मन साहब के बारे में। दोस्तों, उनके जो करीबी लोग थे, जो उन्हें ज़्यादा करीब से जानते थे, वो कहा करते थे कि बर्मन साहब आप काफ़ी कंजूस हैं। जी हाँ, उन्हें काफ़ी कंजूस माना जाता था। उनके बेटे RD बर्मन साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि ST बर्मन साहब जब भी मंदिर जाते थे तो जानते हैं वो क्या करते थे? वो अपनी दोनों चप्पल यानी दोनों शूज़ एक साथ नहीं उतारते थे यानी एक जगह पर नहीं रखते थे। उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता था कहीं कोई उनकी चप्पल चोरी करके ना ले जाए, इसलिए वो अपनी दोनों चप्पल अलग अलग जगह पर यानी दूर दूर रखा करते थे। कह सकते हैं कि एक चप्पल इस कोने में रखी तो दूसरी चप्पल दूसरे कोने में रखती। तो तब उनके दोस्त उनसे मजाक किया करते थे और कहा करते थे अगर किसी चोर ने उनकी दोनों चप्पलों को ढूंढ लिया यानी पहचान लिया और चोरी करके चला गया तो क्या होगा। तो तब बर्मन दादा कहा करते थे यदि चोर ने इतनी मेहनत की, इतना दिमाग लगाया कि उसने मेरी दोनों चप्पल ढूंढ ली तो फिर ठीक है, वो इन्हें ले जाने का हकदार है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। एनीवे, अगला गीत, दो गीत बैक टू बैक, बहुत ही खूबसूरत गीत हैं दोस्तों, पूरे दिल से ईमानदारी से सुनिएगा।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: Welcome back Mumbai. 10:01 हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं FM Rainbow. ये समय है न्यूज हेडलाइंस का. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोन्स के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाएं हैं, रचनात्मक प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलकियारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया. इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलकियारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था. मुंबई में आज से ब्रिक्स वेव बाजार शुरू हो रहा है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित इस 2 दिन के कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे. इसका उद्देश्य वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में सहयोग को बढ़ावा देना है. अंत में खेल. जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा. आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस. सुनते रहिए FM रेनबो. वेलकम बैक मुंबई. 10:03 हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर. कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत और आपके साथ होगा आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान. तो चलिए बहुत ही पैपी सॉन्ग, मस्ती भरा, छेड़छाड़ वाला गाना लेकर मैं आ रहा हूँ आपके लिए. किशोरदा और आशा जी की आवाज़ें.

0: जी हाँ, मुंबई सिटी 10:12 और 48 सेकंड हो चुके हैं और आज है 6 अगस्त 2026, दिन है गुरुवार का। और दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज की दुनिया में, यानी आज के दिन इस दुनिया में एक बहुत ही ख़ास घटना हुई थी और जिसका ताल्लुक हम सभी इंसानों से है, कहीं ना कहीं बल्कि कह सकते हैं कि इंसानियत से है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह 8:15 आप क्या कर रहे थे, तो आपका जवाब होगा कि हम रविन चाय पी रहे थे या कॉफ़ी पी रहे थे, या हम न्यूज़पेपर हमारे हाथ में था और साथ में हम रेनबो सुन रहे थे, या टीवी पर कुछ देख रहे थे, या मोबाइल के साथ कुछ कर रहे थे। यही सब जवाब हो सकते हैं। और हो सकता है कुछ लोग काम पर जाने के लिए, यानी जिन्हें जल्दी काम पर जाना होता है, वो घर से भी निकल गए हों, तो ऐसा ही कुछ जवाब आपका होगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज ही का दिन था, यानी 6 अगस्त, और सुबह ठीक 8:15 पर एक बहुत बड़ा परमाणु हमला और 70 से 80 हज़ार लोगों की ज़िंदगी पल भर में ख़त्म हो गई थी। अगर आप समझ गए हैं कि मैं किस घटना की बात कर रहा हूं, तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बताएं कि हम किस घटना के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और ये कौन सी घटना है। सुनते रहिए FM रेनबो।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: फरमाना।
1: जी हाँ दोस्तों, 10:24 और 24 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और मैं आपके साथ आपका आरजे रविन चौहान। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आज के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, बल्कि कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ था, और जो कह सकते हैं कि हम की इंसानियत के लिए कहीं से भी उसे सही या जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और हमारे जिन लिसनर्स ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेरुल से वेदेही जी और रजनीकांत पाटिल वधावन से, मंगला पठारे जी डीएन नगर अंधेरी वेस्ट से, और मनोज मात्रे दहीसर से, दीपा पालकर जी माहिम से, भालचंद्र फाटक जी अजय साखरे इंदौर से, और फिरोज सिंगनपुरिया जी ग्रांट रोड से, संतोष गावन वर्ली कोलीवाड़ा से, विजेंद्र घाटोल अकोला से, और तनुजा शर्मा अंधेरी से, लाली झा इंदौर से, और राकेश माथुर जी पुणे से। आप सभी ने सही जवाब दिया है। आज के दिन जो खास घटना हुई थी, बल्कि एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी त्रासदी थी मानवता के लिए, और वो थी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था। दोस्तों, इस बम को नाम दिया गया था लिटिल बॉय। जी हाँ, हिंदी में कह सकते हैं कि छोटा लड़का, लिटिल बॉय। और इस लिटिल बॉय ने पलक झपकते ही 70 से 80 हज़ार लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। 70 हज़ार से कुछ ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी नरक बन गई थी। जला हुआ शरीर, शरीर पर गहरे घाव, कई तरह के इन्फेक्शंस, तरह तरह की भयानक बीमारियों का शरीर में हो जाना, और किसी भी तरह की कोई मेडिकल हेल्प, जी हाँ, बहुत बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह की कोई मेडिकल हेल्प नहीं थी, क्योंकि इस

परमाणु हमले में ज्यादातर डॉक्टर और नर्स मारे गए थे। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को संभालने के लिए, देखने के लिए कोई जिंदा बचा ही नहीं था। बहुत बड़ी एक त्रासदी थी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, लता जी की आवाज़, और इस पर हम चर्चा करते रहेंगे फिल्म प्रेम पुजारी से।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: जी हाँ दोस्तों, विक्रोली से सोहनलाल यादव जी का जवाब भी बिल्कुल सही था, लेकिन इन्होंने अपना नाम ठीक तरह से नहीं लिखा था, इसलिए सर आपका नाम हमने अभी शामिल किया है, सोहनलाल यादव विक्रोली से। तो गीत संगीत के दीवान एफएम के चाहने वालों, आज हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था। जी हाँ, जापान के शहर हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 का दिन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमाणु हमले की वजह से शहर में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था, गौर से सुनिएगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि लोगों के शरीर टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से जलने लगे थे। और उस जलन से बचने के लिए लोग वहाँ पर जो एक नदी थी, उस नदी में कूद गए, उस नदी में छलांग लगा दी और फिर उस नदी में डूबकर मर गए। शहर में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं बची थी, न बिजली, न पानी, ना ही कोई संचार का माध्यम, यानी किसी भी तरह से कहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था, और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बची थी कि कोई शहर छोड़कर कहीं भाग जाए। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हिरोशिमा के लोगों के लिए वो दिन कैसा रहा होगा। आज अगर मुंबई में हमें एक दिन पानी नहीं मिलता या 2-4 घंटे के लिए लाइट चली जाती है तो हमारी क्या हालत हो जाती है, आप समझ सकते हैं। एनीवे, अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है और फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, और बात कर रहे हैं हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमाणु बम के रेडिएशन की वजह से पेड़ पौधे फसलें सब खत्म हो गए। 6 अगस्त को जब हिरोशिमा पर यह हमला हुआ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, खाने का सब सामान जल कर खत्म हो गया। खाने के सामान के जो बड़े बड़े गोडाउन थे वो सब जल कर राख हो गए, और अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत खाना बचा भी था दोस्तों तो वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड था, यानी उसे खाया ही नहीं जा सकता था। अगर कोई इंसान उसे खा ले तो उसकी मौत हो जाएगी। पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं था। आप समझ सकते हैं कि हिरोशिमा के लोगों ने कितनी तकलीफ उठाई होगी। इस बॉम्ब के रेडिएशन की वजह से जो लोग जिंदा बच गए उनकी ज़िंदगी भी बहुत बुरे हाल में थी। कुछ लोगों की आंखें चली गई, कुछ लोग हमेशा के लिए बहरे हो गए, कुछ लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए यानी पागल हो गए। हिरोशिमा की कितनी पीढ़ियां इस लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम ने हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। तो ऐसी बहुत ही भयानक त्रासदी थी ये, बहुत बड़ी कह सकते हैं कि इंसानियत के लिए एक बहुत दुख की बात थी। एनीवे, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोरदा की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत।

जी हाँ, मुंबई सिटी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान इस स्लॉट में आपके साथ था, और सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और मेरा आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है लगभग, और हमारी साथी आरजे उर्वशी स्टूडियो में आ चुकी हैं और अगले स्लॉट में आपके साथ रहेंगी। हम बात कर रहे थे हिरोशिमा के बारे में कि किस तरह से उस लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम से हिरोशिमा का जो एक खूबसूरत शहर था पूरी तरह से तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, कई लाख लोगों की जिंदगी नरक बन गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिरोशिमा को फिर से आबाद होने में लगभग 10 साल का समय लगा दोस्तों। आज हिरोशिमा फिर से एक विकसित शहर के तौर पर जाना जाता है और यहां की आबादी है लगभग 12 लाख। आज भी हर साल, जी हाँ हर साल 6 अगस्त के दिन जापान में हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। जापानी लोग परमाणु हथियारों के खिलाफ शांति रैलियां निकालते हैं, उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और पूरी दुनिया के सामने उस त्रासदी को लेकर अपना विरोध जताते हैं और कोशिश करते हैं कि इंसानियत की मशाल हमेशा जलती रहे, जिंदा

रहे। तो सुनते रहिए FM रेनबो, और इसी के साथ मैं रवीन आपसे विदा लेता हूँ। दो खूबसूरत गीत बैक टू बैक आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, एक है किशोरदा की आवाज़ में और एक है लता जी की आवाज़ में। हैव ए नाइस डे।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 11 बज चुके हैं और अब आप सुनेंगे हिंदी में हेडलाइंस। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधक विधेयक बिल पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कल ताशकंद में हुई। बैठक के दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा शिक्षा, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुए इस घटना में करीबन 1,40,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटना स्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। BWF बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में PV सिंधु को नौवीं वैरायटी

और इसी खूबसूरत गाने के साथ मैं उर्वशी आ गई हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं रेनबो एफएम पर ब्रेक फ्री। जिंदगी में ना हम अक्सर छुट्टियाँ ले लेते हैं ना, कभी कभी ऑफिस से, पढ़ाई से, काम से, लेकिन कभी आपने उन चीज़ों से भी ब्रेक लिया है जो धीरे धीरे से आपकी खुशियाँ छीन रही हो? तो आज मैंने सोचा कि चलो ना कुछ ऐसी चीज़ों पे बात की जाए जिनसे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ें। और टॉक्सिक का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं होती ना, जो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी कभी हम खुद कुछ ऐसी चीज़ों को अपने साथ रख लेते हैं जो हमारी है लेकिन टॉक्सिक है, जैसे कि ओवरथिंकिंग या बात बात पर खुद को ही जज करते रहना। और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी को खुश करना लेकिन सिवाय खुद के, खुद को कभी कभी हर एक इंसान के साथ तोलना जो आपके आसपास है। आज हम कोशिश करेंगे इस घंटे में ब्रेक फ्री वाले जो आवर में हम मिल रहे हैं कि इन चीज़ों पे थोड़ा गौर करें कि किन किन चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक लो तो ज़िंदगी थोड़ी और खुशहाल हो सकती है। तो चलिए इसी बात पे मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपको सुनाती हूँ और कुछ एक छोटी सी कहानी भी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये खूबसूरत सा गाना। मैं हूँ उर्वशी, फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ, आपके साथ अब बने रहने वाली हूँ मैं कुछ घंटों के लिए। तो चलिए खूब सुंदर से गाने सुनते हैं और मज़ा करते हैं।

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

रेनबो एफएम पर मैं हूं उर्वशी और कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री। तो मैं जब लास्ट टाइम आपसे बात कर रही थी ये गाने सुनाने से पहले, तो मैंने कहा था कि टॉक्सिक चीज़ों से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, एक व्यक्ति था, जो अपने बैग में, उसके पास एक झोला था, बड़ा सा झोला, उसमें पत्थर रखता रहता था। लेकिन कब, जब भी दिन में या फिर हफ्तों में उसे कोई बुरा कह दे, कोई दूसरा व्यक्ति आके उसके लुक पे या फिर उसकी बात करने के तरीके पे कमेंट कर दे, तो उसको इतना बुरा लग जाता कि वो उस बात को याद रखने के लिए या फिर

आप में सुधार लाने के प्रयत्न से भी अपने बैग में एक पत्थर रख लेता था। अब कितने महीनों बाद ऐसा चलता रहा तो बैग इतना भारी हो गया कि उसका उस बैग के साथ चलना भी मुश्किल हो गया था। यस, तो जब वो चलता रहा तो उसे ये पता चला कि असल में वजन पत्थरों का नहीं है, वजन उन बातों का है जिन्हें

0: Smalls Digital Banking सेवा आसान और सुरक्षित.
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: EKYC,
1: NEFT, RTGS,
0: IMPS,
1: Cosmos रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट Cosmos बैंक में जरूर होना चाहिए.
1: Cosmos Cooperative Bank, Enriching Life.

आप सुन रहे हैं FM रेनबो और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे उर्वशी। हम बात कर रहे थे उन चीज़ों से ब्रेक की जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा टॉक्सिक बना देती है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज़्यादातर ढूंढते हैं कि कोई लोग है क्या हमारे आसपास जिनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, जो टॉक्सिक है, तो उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, उनसे ही ब्रेक लेने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे कुछ चीज़ें जो मैं अपने लिए खुद यूज़ करना चाहती हूँ, मैं ट्राई भी करती हूँ उनको इम्प्लीमेंट करना, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी उन्हें शेयर करूं। पहले मुझे आदत थी कि हर 5-5 मिनट में अपना फ़ोन चेक करना, तो वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उसी में रहता है। उसके बाद आप जब भी सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करो तो वो जो फ़ोटो है उसकी लाइक्स देखते रहना बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। देखिए सोशल मीडिया यूज़ करना, वहाँ से लोगों से जुड़ना, अपनी यादें शेयर करना, ये सब बुरा नहीं है, लेकिन कितने लोगों ने लाइक किया उस पर अपने आप को जज करना, ये तो थोड़ा सा टॉक्सिक है और उससे तो ब्रेक बनता ही है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आपकी शांति भी छिन सकती है। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि खुद भी इम्प्लीमेंट करूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इन्हें शेयर किया जाए। तो FM रेनबो पे मैं उर्वशी हूँ ब्रेक फ्री में आपके साथ बनी हुई कुछ खूबसूरत गानों के साथ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

नमस्कार, अब हम सुनेंगे समाचार। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल्स प्राप्त हो रहे हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि एजेंसियां जांच कर रही है और दोषी जेल भेजे जा रहे हैं। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। मुंबई यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और 4 साल के डिग्री कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया की अवधि 12 अगस्त तक बढ़ा दी।

है। स्टूडेंट्स के बड़े हित को ध्यान में रखते हुए मुंबई यूनिवर्सिटी ने यह निर्णय लिया है। समाचार यहां समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं FM रेनबो। मैं हूं आपके साथ आपकी RJ उर्वशी। ब्रेक फ्री में हम थे आपके साथ पिछले घंटे और अब समय आ गया है म्यूजिक कैफे में आपको ले जाने का। बहुत ही खूबसूरत गानों के साथ इस घंटे में मैं आपसे मिलने वाली हूं, तो बने रहिए मेरे साथ।

होते हैं, जो संगीत होता है वो सिर्फ कानों से सुनाई नहीं देता, वो दिल को भी छू जाता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई गाना अचानक से आप रेडियो पे सुने और वो किसी ऐसी याद का दरवाज़ा खोल दे जो आपको लगता था कि आप भूल चुके हो? किसी अपने के साथ बिताया हुआ छोटा सा पल, कॉलेज का आखिरी दिन, या फिर कुछ ऐसी बात जो आपको लगता था कि आप भूल चुके हो, लेकिन नहीं, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठी हुई थी। तो बस ऐसे ही कुछ गानों की बातों के साथ म्यूजिक कैफे में आपकी होस्ट उर्वशी।

0: सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

0: पतंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है, इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहां। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओ, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आपसे पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? और क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के

0: साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए पांच आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ceiet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर

0: यही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
1: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
0: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
1: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
2: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
3: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
1: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
3: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
4: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
4: जी जी चलो चलो देखते हैं।
1: हाँ, चलो चलो चलो चलो चलो जल्दी चलो।
5: अहोम के महाराज की जय हो।
6: जय हो, जय हो।
5: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बीशु के साथ।
7: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: अद्भुत, अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में यह संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की जय हो।

0: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
1: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
2: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
0: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
2: अच्छा।
0: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।

0: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
0: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
1: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
0: ओह,
1: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
0: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
1: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
0: ओह,
1: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
0: अच्छा।
1: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
0: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
2: जी।
0: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
1: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
0: जी।
1: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
0: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।

पेट भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं। मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया
2: नमस्ते। नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। शाबाश
2: बेटा, मामा जी आए हैं। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी, एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है। चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक। आई पसंद?

0: और देखो ये भालू ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। नो नो शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे, पहले तो ये ऐसे नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर, पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, और विशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे, इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मगर मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा ओफो, चली गई बिना खिलौने लिए।
4: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
4: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
4: क्या है मम्मा?
1: देखो ना ताशु आई है।
4: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
3: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
4: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
3: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
4: खेल लो प्लीज।
3: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
4: प्लीज
3: नहीं।
4: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
3: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
6: वाह चिड़िया कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह, तोते, तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
6: मैं तो बाहर जा रही हूँ। हम
1: अरे
6: वहाँ देखो चिड़िया तोते कितने सुंदर है।
1: अरे सुन तो,
6: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
1: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बार देखे तुमने?
1: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
1: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
5: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहां पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।

अब अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1.04 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर में मतलब एक बजे, दोपहर के एक बजे आप समाचार सुनेंगे मराठी में, और उसके बाद समय होगा आपके और मेरे सभी के फेवरेट शो हिट एंड हॉट का। हिट एंड हॉट आप सभी का और मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपके पसंद के गाने बजाती हूँ। यस, तो सबसे पहले आप नंबर नोट कर लीजिए जिस पे आप मुझे अपने पसंद के गाने मैसेज कर सकते हैं, 8657661071। मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, 8657661071। आप अपने जो फरमाइश के गाने हैं प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट आवर है हमारा 1 से 2 का, उसमें मैं आपकी फरमाइश के सारे गाने आपके लिए बजा सकूँ। मैं बजाना चाहती भी हूँ कि वो सारे गाने आपके लिए मैं एक करके बजाऊँ, लेकिन उससे पहले हम अभी हिंदी मराठी में समाचार।
1: महाराष्ट्राचं प्रसारण मुंबई केंद्रावरून सहक्षेपित करू। सुरुवातीला मराठीतून बातमीपत्र।

हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर न्यूज। मैं उर्वशी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। कार्यक्रम शुरू हो चुका है हिट एंड हॉट, आपकी पसंद के गाने आपके लिए जिसमें मैं बजाने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए हैं, तो बिना वक्त गवाए सबकी फरमाइश की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले जो दो गाने मैं बजाने वाली हूँ वो है विजेंद्र घटोल अकोला से, और उनकी फरमाइश थी बादशाह जो फिल्म थी उसका गाना था, तो ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा छोड़ के। तो जी हाँ विजेंद्र जी आपका गाना। और उसके बाद राम प्रजापति जी ने एक गाना रिक्वेस्ट किया है, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम सिर्फ तुम फिल्म से। तो ये दो गाने बैक टू बैक मैं बजा रही हूँ, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि जितने भी हो सकते हैं उतने फरमाइश के गाने मैं ले सकूं। तो बने रहिए हमारे साथ एफएम रेनबो पे।

आप सुन रहे थे एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। सभी की फरमाइश लेने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी कुछ गाने लंबे भी होते हैं, तो अगर कोई एक गाना ले लिया तो फिर पॉसिबल नहीं होता कि किसी और का गाना ले पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सभी के गाने हम ले। अभी तो मैं आपको अजय सखारे जी की फरमाइश थी, उनको कृष्णा कॉटेज फिल्म का एक गाना सुनना था। अजय जी, मैं आपको कृष्णा कॉटेज फिल्म का ही एक दूसरा गाना सुनाना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत गाना है, वो भी आपको इतना ही पसंद आएगा। और उसके बाद एक डेढ़ बजे मतलब 1:30 PM पर हम सुनेंगे समाचार।

ठीक है, तो 1:30 बजे हम समाचार सुनेंगे, उसके बाद फिर से फरमाइश शो का जो हमारा दौर है उसको मैं कंटिन्यू करूंगी अपनी साइड से। तो पहले ये गाना अजय सखारे जी की फरमाइश पे, और जो जो लोग अपनी फरमाइशें भेज रहे हैं प्लीज़ भेजते रहिए, जितना हो सकेगा वो सारी फरमाइश हम शो में लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं समाचार के बाद।

आप सुन रहे हैं FM रेनबो म्यूजिकली योर्स और मैं हूं उर्वशी। समय है हीट एंड हॉट का। आपकी फरमाइश के गाने मैं आपको एक के बाद एक सुनाने की कोशिश कर रही हूं। अभी कुछ नाम जो मैं लेना चाहती हूं, क्योंकि होता क्या है ना कि सभी लोगों के गाने तो डेफिनेटली मैं नहीं ही ले पाती हूँ अपने लिस्ट में, लेकिन कुछ लोगों के नाम ले लिए बिना जाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो जो जो लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं जब से मैं आई हूँ तब से, तो बहुत सारे लोग हैं जो लगभग 3 घंटे से मेरे साथ बने हुए हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहती हूँ गुरमीत सिंह और मिता सिंह का, जो हमको सुन रहे हैं साउथ अफ्रीका से। अरे वाह, इतने दूर से आप हमको सुन रहे हैं मिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रमोद चिंचोलकर हमको सुन रहे हैं, फिरोज सिंहपुरिया हमको सुन रहे हैं, प्रणव शिंदे जी, राकेश माथुर जी, संदीप कुमार जी, मीना जी, मेहर अरोरा, मीरा सिंह, लालगिरी गोस्वामी जी, मुकेश कश्यप, दिग्दर्शन और कविता, शुभलक्ष्मी जी, स्वर्णन सिंह जी, मनीषा कमेरकर जी, बहुत सारे लोग हैं। अरुणा खार जी जो यहाँ से हमको सुन रही है बॉम्बे से, विठल मुंग से जी, बहुत बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ बने हुए हैं और सभी के बहुत बहुत सारे प्यार भरे मैसेजेस हैं, सबके रिक्वेस्ट भी हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना मैं सबकी रिक्वेस्ट को ले पाऊँ। तो अभी मैं जिन दो लिसनर्स के पसंद के गाने बजाने वाली हूँ, उनमें से पहला गाना है फिरोज सिंहपुरिया, जो हमारे काफ़ी रेगुलर लिसनर हैं, उनकी फरमाइश थी चुरा लिया है तुमने जो दिल को गाना, उनको सुनना था। और उसके बाद राकेश माथुर जी की फरमाइश है सावन बरसे तरसे दिल, मौसम भी है अभी तो इस गाने को सुनने जैसा, तो ये दोनों गाने मैं बैक टू बैक बजाने वाली हूँ और देखते हैं बाद में किसका गाना हम आज के प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ FM रेनबो पे।

एफएम रेनबो पर मेरे यानी उर्वशी के साथ आप सुन रहे थे हिट एंड हॉट। लेकिन अब मेरे आपसे जुदा होने का समय आ चुका है। आज के दिन में बहुत ही खूबसूरत गाने हमने सुने, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की, और सबसे ज़्यादा आपके जो प्यार भरे मैसेजेस आते हैं ना व्हाट्सएप पे, वो देख के तो ऐसा लगता है कि कितना जल्दी हम यहाँ पे आ जाए और आपसे बातें करें। तो जाते जाते मैं चाहती हूँ कि कोई लिसनर अगर उनका नाम रह गया है तो आई ट्राइड वंस अगेन कि सभी के नाम मैं लूं। तो एक शुभलक्ष्मी जी हमको सुन रही है। शुभलक्ष्मी जी नमस्कार बोल रही है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राम प्रताप जी, प्रजापति जी, सुनील पाठक जी है हमारे साथ, वो हाय बोल रहे हैं। अंकित है हमारे साथ, बाबा दादर, अशोक पाटिल वर्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज महोड़ जी जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं वो भी हम

हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल सपलक जो है वो भी हमारे साथ है, अजय सखारे, टीडी मल्होत्रा जी, विट्ठल जी, अरुणा जी, हमारे साथ है आकांक्षा मनोज सिन्हा जो अहमदाबाद से हमें सुन रही है। हाय आकांक्षा, आप अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीषा जी और बहुत सारे लोग कैंट से हमारे साथ जो हमेशा जुड़ते हैं, कविता गौड़ और लालगिरी गोस्वामी जी, महेश कश्यप जी, आप मेहर अरोड़ा, बाकी जितने जितने लोग हमारे साथ आज हमारे शो में जुड़े थे उन सभी का बहुत शुक्रिया। फिरोज सिंहपुरिया जी हाय बोल रहे हैं, अभिजीत जी बोल रहे हैं, मीना जी, प्रमोद जी, सोहन लाल यादव जी, वो बोल रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबकी फरमाइश लेना तो आप जानते ही हैं कितना मुश्किल है। तो मैं जाते जाते दीपा पालकर जी की एक फरमाइश थी, कैसी है ये रुथ कि जिसमें दिल चाहता है फिल्म का गाना, आपको सुनाते हुए बस आपसे विदा लेना चाहती हूँ। और आप 2 बजे समाचार सुनेंगे हमारे मराठी सुनेंगे समाचार हिंदी और इंग्लिश में, और उसके बाद आपके साथ होंगी मराठी आरजे। तो अभी के लिए मुझे यानी उर्वशी को विदा दीजिए, मिलते हैं अगली बार।

0: allegations of Ashish Mishra, the prime accused in the 2021 Lakhimpur Kheri violence case. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joymala Vaghji and V. Mohana dismissed Mishra's application, seeking relaxation of his bail conditions. The Supreme Court today asked petitioners, including Doctors Association, to file their responses to the centre's affidavit stating that shifting any ETUG from pen and paper to a computer-based format is under consideration. A bench of Justices B.S. Narasimha and Alok Arade scheduled the next hearing for August the 19th. The centre told the court that it is considering conducting any ETUG in a computer-based format, either in a single stage or a two-stage model similar to the joint entrance examination, mains and advanced. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Ji Yatra has resumed after a one-day halt. The pilgrimage, which commenced on the 3rd of July, witnesses thousands of pilgrims undertaking the sacred journey under a multi-layered security grid on a daily basis. A report.
1: More than 470,000 pilgrims have performed darshan at the holy cave shrine since the commencement of the yatra. Every day, thousands of pilgrims, including men, women, children and others, undertake the yatra, which is scheduled to culminate on August 28. The yatra is presently continuing through the Baltal route only, as the traditional Pahalgam route is undergoing maintenance. Authorities have made elaborate arrangements to ensure smooth and safe conduct of the yatra. Shfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
0: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa for the day. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Chhattisgarh, Rajasthan, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, parts of Northeast India and the Andaman and Nicobar Islands till tomorrow. In Kerala, red alert indicating extremely heavy rainfall in three districts. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
2: Idukki, Kottayam and Pathanamthitta districts in Kerala are under red alert, indicating the likelihood of extremely heavy rainfall. These districts were under orange alert earlier this morning. Orange alert predicting isolated very heavy rainfall remained in force in five districts. The remaining six districts in Kerala are under yellow alert, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: Monsoon has intensified across Jharkhand, bringing a significant change in weather conditions over the past 24 hours. We have a report.
3: At least 20 people have lost their lives due to lightning strikes in Jharkhand during the past 24 hours. Giridih district reported the highest number of casualties with 11 deaths. The India Meteorological Department has issued an orange alert for the next 3 days in vulnerable areas of northwestern and central Jharkhand, warning of very heavy rainfall. A yellow alert has also been issued for the entire state, including Ranchi, Khuti, Ramgarh, Bokaro, Dhanbad and Kodarma, with a warning of strong winds. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: Flood conditions in Odisha continue to improve as water levels in all major rivers, including the Mahanadi, have receded. However, fresh heavy rainfall has caused widespread waterlogging in Bhubaneswar. Relief and restoration work is continuing in the flood-affected districts, even as authorities remain on high alert. We have more from our Odisha correspondent.
4: At present, 8 sluice gates of the Hirakud Dam remain open to regulate the reservoir level. Even as water levels fall, the hardships of flood-affected people continue, with restoration of normal life still a major challenge. Meanwhile, continuous heavy rain since last night has disrupted normal life in the capital city Bhubaneswar. Several roads and low-lying areas in the city remain waterlogged, with rainwater entering many houses and damaging household belongings. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall in Keonsar and Mayurbhanj districts today, and a yellow alert for the remaining districts. Rainfall alerts have also been issued for 20 districts tomorrow, though rainfall activity is expected to decrease over southern and western Odisha. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
0: On to sports, Indian javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, secured places in the final rounds of their respective events at the World Athletics Under-20 Championships in Eugene in the USA. The finals will be played on Sunday. Hockey India today announced the 18-member Indian junior women's team for the AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August the 30th to September the 13th. The squad comprises 18 players along with two alternate players. and will be led by midfielder Khaddam Shleima Chanu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha resumes proceedings amid opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehalka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August 30th. Javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, storm into finals of World Athletics Under 20 Championships. With that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
6: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
5: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
7: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
5: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा लिंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नियत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
8: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
5: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
9: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके

0: चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
2: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
3: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
2: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई।

बरबर कर कर संभवा चूला गो शिवला नवरस सगला ये शिवला कुल्ला सागला उगला निगला मनोवेगला गोतला चुपा।

0: वो वादे वो इरादे, वो कस्में वो गुजारिश, वो कविता वो गीत, वो नहर वो आकाश, वो पहाड़ वो समुद्र, वो खिलखिलाते चेहरे, वो फूल वो पत्तियां और वो मिट्टी जिसके ऊपर आप और हम खड़े हैं, वो मिट्टी जो हमें अनाज देती है, वो मिट्टी जो रहने के लिए घर, काम करने की ऊर्जा, एक पहचान देती है। उस मिट्टी का तिलक कर अगर हम सर उठा के खड़े हों तो कोई भी पहचान लेगा कि हम भारतीय हैं। और इसी मिट्टी में जहां हम अनाज उगाते हैं, हरी भरी वादियों में उसके लुत्फ उठाते हैं, यहां पर देश की रक्षा करने के लिए फौलाद भी जन्म लेते हैं। और ऐसे ही जांबाज इंडियन आर्मी के अफसर ब्रिगेडियर सुशील तमर हमारे साथ, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देशवासियों के साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के साथ मैं ब्रिगेडियर सुशील तमर जी का स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग।
0: सबसे पहले तो पूरे देश की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि यू सर्विंग इन द इंडियन आर्मी बट यू डिड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। आपने जो भी रेगुलर नेसेसरी परमिशंस थी वो ली और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, मेरे लिए खुद भी एक बहुत खुशनसीबी का मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके श्रोताओं से बात कर सकूं। इट्स रियली एन ऑनर।
0: मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो जांबाज अफसर होते हैं जिन्होंने बहुत एक काबिल तरीके से एक ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, वो इसी तरह मीठी जुबान बोलते हैं, मतलब कभी कभी वो कड़क साउंड नहीं करते, वो इट्स समवॉट लाइक अ कैमोफ्लेज।
1: नहीं, मेरे ख्याल से ये संगति का असर है। आपका लहजा खुद इतना सुहाना है कि शायद हमारे लहजे में भी आपकी मिठास आ गई है।
0: ओके, तो दुश्मन को मीठा मीठा कह के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट डाउन करो एंड देन टारगेट है, इज दैट द आईडिया?
1: या, दैट्स इट।
0: तो अपने सुनने वाले को बता दूं कि ब्रिगेडियर सुशील तंवर एक अलुमनाई है मिलिट्री स्कूल अजमेर के, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला के और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के। आप प्रेस्टीजियस मिलिट्री कोर्सेज करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स कोर्स IIDC जो किंग्स कॉलेज लंदन में होता है वो करने भी जा चुके हैं, और ये महारत हासिल करके आपने, ये कहूँ कि वो द कोवेटेड यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी वो पहनी।
1: बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है। मैं तो एक्चुअली बचपन से ही, हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा हूँ जैसे आपने बताया, और हमारे स्कूल का ये मकसद था कि छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन किया जाए
0: जी।
1: उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए, तो बचपन से ही यूनिफॉर्म हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, एंड दैट इज़ वाई वी फील ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का।
0: और इसके साथ साथ अपने देशवासियों को बता दें कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं ब्रिगेडियर सुशील तमर, आपने 17 साल जो योगदान दिया भारतीय आर्मी को अभी तक, उसमें काउंटर टेररिज्म एनवायरनमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में था वहां पे इलीट 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट को कमांड किया है। यंग ऑफिसर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे जोखिम झेले, ऑपरेशन रक्षक में आप एक बैटल कैजुअलिटी के शिकार हुए लेकिन शरीर शिकार हुआ, हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते गए। नॉर्दर्न कमांड की कमीशन कार्ड और साथ ही साथ इन्हें COAS कमेंडेशन कार्ड 2 बारी मिल चुका है। इनके बारे में और हम बात करेंगे, लेकिन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर सुशील तमर जी, ये सफर शुरू कहां हुआ आपका? When did you want to come to the Indian Armed Forces?
1: जैसा मैंने पहले बताया कि हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़े हुए हैं
0: जी।
1: 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन हो गया था।
0: ओके।
1: तो मेरे ख्याल से शायद मैं पांचवी छठी क्लास में रहा होऊंगा जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी फौज में जाना है, सेना में जाना है। और एक बार हम स्कूल में आ गए तो हमारा रूटीन, लोग कहते हैं कि मैंने 17 साल फौज में दिए, 20 साल दिए, 25 साल दिए, लेकिन हम स्कूल वाले, हम जो फौज में आ गए, हम कहते हैं कि हम तो बचपन से ही पीटी परेड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक इट वॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट आई रियली वॉन्टेड टू ज्वाइन।
0: तो बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन माहौल में रहे होंगे।
1: हाँ, डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन था जो हमारे जीवन में था। सुबह टाइम पर उठना, पीटी करना, क्लासेस टाइम पे जाना, शाम को गेम्स, स्टडी पीरियड। और वैसे पुराने जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक अलग डिसिप्लिन और एक रूटीन था, खासकर हमारे मिलिट्री स्कूल्स, 5 मिलिट्री स्कूल हैं पूरे देश में। तो मैं अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे स्कूल में बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि डिसिप्लिन में रहें और फौज की तैयारी करें और हम आगे फौज में।
0: ओके। पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सवाल पूछता रहूंगा लाइफ की फिलॉसफी से जुड़े। आपको लगता है कि तब का डिसिप्लिन, बड़े होने के बाद जो डिसिप्लिन है, यू हैव नो रिग्रेट्स कि डिसिप्लिन से ही जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी और निखरती है, लुक्स मोर कलरफुल?
1: हाँ, मे नॉट बी कलरफुल, बट सर्टेनली डिसिप्लिन ब्रिंग्स एन ऑर्डर। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन रहने से आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर जाती है।
0: ओके।
1: उसमें एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, आपका आपके आसपास वाले लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ऐसा मुझे लगता है। और सेना में तो डिसिप्लिन ही जिंदगी है।
0: yes.
1: तो इसीलिए अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा।
0: पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट्स द रीज़न कि इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड।
1: सर्टेनली सर्टेनली। एंड हम लोग यूएन जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं।
0: Absolutely.
1: और वैसे तो वर्ल्ड ओवर आर्मीज आर नोन फॉर डिसिप्लिन। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सेनाओं में इतना अनुशासन नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की बात ही कुछ और है।
0: सो क्योंकि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिले जुले सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियन हमें सुन रहे हैं, हमें पूरा

0: इस समय सुन रहा है क्योंकि आकाशवाणी के लगभग सारे स्टेशन इस समय ट्यून्ड इन हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से. बहुत सारे हमारे NRIs जो हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं. हमारा व्हाट्सएप का जो मशीन है वो मैं खोल लेता हूँ. एंड ऑफ कोर्स अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे और उनका नाम है जोया. खैर उन्होंने कुछ सुझाव दिए वो तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या खास बात है इंडियन आर्मी में आज की डेट में, इतने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं, ये कहना सही होगा?
1: बिल्कुल सही है, हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं और दुनिया बदल रही है, साथ में सेना बदल रही है. दी वॉर्स आर चेंजिंग, दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बैट इज चेंजिंग, तो काफी बदलाव आ रहा है.
0: जब आपने पहली बार आपने वर्दी पहनी उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
1: हाँ, जब हम 97 में कमीशन हुए थे तो हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी, मणिपुर में. तो कुछ साल मैंने वहाँ गुजारे, लेकिन उसके बाद जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज़्यादातर वक्त मैंने जम्मू कश्मीर में गुजारा, लेकिन शुरुआती 2-3 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुजारे थे.
0: तब का नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अब का बहुत फ़र्क आ गया होगा?
1: फर्क तो हर जगह आया है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया मुझे जाने का इतना मौका नहीं मिला. बीच बीच में जाता रहा, बट एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली सर्व नहीं किया मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा. लेकिन जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तरक्की हुई है, लोगों के नज़रिया बदला है, सड़कें बदली हैं, डेवलपमेंट हुई है, तो आपके मीडल ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं, तो ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है और साथ ही ज़िंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं.
0: सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर. उस समय बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जब आप वहाँ आपकी पोस्टिंग.
1: जी, मैंने जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा गुजारे हैं और पुंछ, मेंडर, सुरनकोट, रजौरी, आपने बात की 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट की, बारामूला में मैं रहा. तो तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर से मेरा एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है वहाँ के लोगों के साथ. बहुत मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि मैंने इतना वक्त गुजारा है. और मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट होम इज जम्मू एंड कश्मीर.
0: वाओ, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा. मतलब फौलाद भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात ही कुछ और है.
1: बात ही कुछ और है वहाँ के लोगों के साथ. हमने बहुत काम किया उनके साथ, हमारे जाति ताल्लुकात हैं. और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सोल्जरिंग के सारे पहलू वो सामने आते हैं. चैलेंजिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं और लोगों के साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला है. तो अगर हम कहते हैं कि पी स्टेशन में कोई दिल्ली में है, कोई मथुरा में है, कोई पूना में है, इसके बनस्पत कोई जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने से उसको सोल्जरिंग का जो रियल वैल्यू है वो सामने आती है. सो इट्स टफ बट इट इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग.
0: तो आप हमारे सिविलियंस को इस वार्ता के, आपके और मेरे भी जो वार्ता चल रही है उसके माध्यम से आप ये बताना चाहें कि चाह रहे हैं कि जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप यूनिफॉर्म पहने और आपने गन पकड़ी एंड यू आर अ ड्रेडेड यू नो मैन इन अ यूनिफॉर्म. आप लोगों से मिक्सअप भी होते हैं. जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली यूथ के लिए.
1: बिल्कुल, और आपने एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि थोड़ा सा नकारात्मक होता है उसके मायने. लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हिसाब से देखते हैं तो वी आर नॉट सीन एज ड्रेडेड, आई थिंक वी आर सीन मोर एज प्रोटेक्टर.
0: और हमारा
1: यस, या ड्रेडेड, इट इज ड्रेडेड फॉर पीपल, या वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, सो दैट वे यस. बट अदरवाइज आजकल जिस तरीके का माहौल है, कई तबकों में सेना को एक ड्रेडेड आइडेंटिटी भी दी जाती है. लेकिन आई थिंक वी आर वेरी टफ विद पीपल हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, बट वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन हु इज ऑन आवर साइड.
0: तो आप इतना टाइम थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखी?
1: हाँ बिल्कुल. वो तो ज़रूरी है. लोगों के साथ अगर हमारे को रिश्ते जोड़ने हैं तो फिर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ेगी.
0: राइट, कुछ बताइए ना वहाँ पे अब जब आपकी पहले पोस्टिंग हुई, या कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद आता हो, एंड यू सेइंग फाइनली मैं अब आर्मी के साथ हूँ और मैं ऑपरेशंस में हूँ.
1: देखिए वहाँ तो डे वन से

0: ऑपरेशंस चलते हैं मुझे okay. अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा किसी ऑपरेशन के okay. लेकिन जैसे आपने बताया मुझे वहाँ पर गोली भी लगी एक एनकाउंटर में
1: okay.
0: जो सूरनकोट में हुआ था इसके अलावा नहीं
1: okay.
0: एक जगह थी जहाँ पर हमें सर्च ऑपरेशन करना okay. था और वहाँ पर जैसा कि किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है आतंकवादियों से सामना हो गया और मुझे गोली लग गई बट नॉट इट वॉज नॉट वेरी सीरियस इंजरी और ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था और इसमें बाद में हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन था इसके पीछे
1: okay.
0: लेकिन इस तरीके के वाक्य मेरे साथ हुए हैं मैं बच गया लेकिन हमारे बहुत बहादुर जवानों और अफसर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई है अपनी जान का बलिदान दिया है मेरे बहुत साथी मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ उस बैच में वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30 ऑफ अवर बैचमेट्स फॉर वेरियस रीजंस सो द कॉस्ट इज क्वाइट हाई बट दैट इज अ कॉस्ट दैट नीड्स टू बी पेड
1: फॉर द नेशन
0: या फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री
1: एक नशा है ना आप लोगों को कि नहीं यार वर्दी पहनी है बस अब सिर्फ देश ही दिखता और कोई नहीं दिखता
0: नशा है जुनून है एंड आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट लव
1: मैंने नशा इसलिए बोला क्योंकि आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है उसके बोल ही कुछ ऐसे हैं
0: हाँ पहला नशा
1: जी
0: और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना
1: एनी स्पेसिफिक रीजन
0: हाँ इसका रीजन दो तीन रीजन है पहला रीजन उसका ये है कि ये मूवी जो जीता वही सिकंदर मैंने यही दिल्ली में रिड्स थिएटर होता था, कश्मीरी गेट के बाहर तो मेरे भाई के साथ मैंने ये मूवी देखी थी मैं आई थिंक 11th या 12th में था और वो मुझे याद है वो गाना पूरा इट इज इम्प्रिंट ऑन माय माइंड और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून भी लगाया था तो सब लोग सोचते थे ये क्या है पहला नशा तो आई यूज टू से मैंने अभी आपको कहा है कि आर्मी इज आवर फर्स्ट लव
1: सर बात तो आर्मी के आगे भी होगी इस गाने को सुनते हैं फिर पूछता हूँ किसके लिए आपने गाया था ये संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप और हमारे साथ ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं स्टूडियो में

0: तो हम अपने सुनने वाले को बता दें कि आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और इंडियन आर्मी की शान। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, माध्यम व्हाट्सएप का ही है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें व्हाट्सएप भेजकर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने भाव यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी से मैं अभी जानना चाहूँगा कि आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो बहुत लंबा अरसा आपने वहाँ पे बिताया है। यू मस्ट हैव सीन द समर्स एंड द विंटर, सारे वेदर आपने वहाँ पे देखे होंगे, तो कुछ शायरी वारी भी तो निकली होगी कभी ना कभी, कुछ मन तो किया होगा ना कुछ गुनगुनाने का, जैसे आपने ये गीत हमें सुनवाया, कुछ और भी आपने कुछ लिखा, कुछ भाव प्रकट किए वैसे?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाए
0: जी।
1: और दो किताबें मैंने लिखी हैं।
0: ओके।
1: एक किताब है मुखबिर, विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
0: मुखबिर ओके।
1: मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर होता है, और ये 17 कहानियाँ हैं इसमें।
0: ओके।
1: सब जम्मू कश्मीर की कहानियाँ हैं।
0: अच्छा।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस की कहानियाँ हैं।
0: ओके।
1: वहाँ के लोगों की कहानियाँ हैं।
0: ओके।
1: और दूसरी किताब मेरी अभी आई है, अमन के फरिश्ते। ये कहानी है, दिस इज नॉवल, ये जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रांत के पुंछ जिले में सूरनकोट एक जगह है।
0: okay.
1: वहाँ पर एक यंग मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसकी कहानी है। और ये किताब अभी 5 महीने पहले ही आई है। दोनों किताबें राजपाल एंड सन्स ने पब्लिश की हैं, और इन दोनों किताबों में मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में देखा, मेरे साथियों ने जो देखा, सो इट इज़ जस्ट ए कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस। Of course, it is fiction and reality combined.
0: मैं आपसे मुखबिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। आपने कहा कि उस वहाँ पे तरह तरह की कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ जब आप वहाँ सर्व कर रहे थे, आपने तब लिखी या तब मन में बनाया और फिर बाद में?
1: ये कहानियाँ मेरे दिमाग में आती रही, जो मैं देखता रहा
0: जी,
1: जो मेरे साथी देखते रहे। हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है
0: जी।
1: कुछ कहानियाँ मैंने तब लिखी जब मैं वहाँ से वापस आ गया
0: जी,
1: और कुछ कहानियाँ मैंने वहाँ पर रहते हुए लिखी, तो मिला जुला संगम है ये। लेकिन जहाँ तक फीडबैक का सवाल है, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इन किताबों को पढ़ के, इन कहानियों को पढ़ के उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में एक नया नज़रिया मिला।
0: ओके।
1: और मेरे लिए एज ए राइटर
0: जी,
1: इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती।
0: कुछ कहानियों का कुछ अंश यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे?
1: हाँ, इसमें 17 कहानियां हैं, जैसे ये कहानी मुखबिर जो पहली कहानी है, मुखबिर जिसके टाइटल

0: इसका ऊपर है किताब का। वो कहानियाँ एक बारामूला के पास गुलाम हसन नाम का इंसान रहता है जो कि फौज के लिए मुखबिरी करता है।
1: These are all hypothetical names, right?
0: Yeah, some of these names are real.
1: Real also.
0: But mostly it is hypothetical. मैंने क्या किया इसमें, जो मेरे साथ रहे लोग, जो मेरे साथी रहे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया,

0: आपके नाम पर भी लग देंगे अगली किताब?
1: मेरा नाम रखा हुआ है।
0: अच्छा, क्या रखा हुआ आपका नाम?
1: फाल्कन वन।
0: अच्छा, आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल पे भी फाल्कन वन आया था जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया था, तो मैंने कहा ये फाल्कन वन कहीं किसी खतरनाक किसी इंसान का फोन आ रहा है, लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की और आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा आप तो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं, लेकिन जो स्क्रीन पे नाम आया था फाल्कन वो सच में काफ़ी खतरनाक था।
1: मेरे एक दोस्त भी हैं, आज ही बने, उनका नाम है टैनी।
0: हाँ, वो उनसे आप मिलते रहिए, आपको उम्मीद है मज़ा आएगा।
1: मेरे सामने बैठे हैं टैनी।
0: हाँ, मुझे फौज में, फौज में एक रिवायत है
1: आपके भी व्हाट्सएप की इमेज के साथ आया था टैनी स्पीकिंग।
0: हाँ, तो हमारी फौज में एक रिवायत है निकनेम्स की। मडवाल को मैडी बोल देते हैं, संवाल को सैम बोल देते हैं, तो यशराज है तो यश बोल देंगे, तो यू नो वी हैव ए विद लव एंड विद अफेक्शन वी गिव निकनेम्स।
1: ओके,
0: शायद हर पेशे में होता होगा लेकिन फौज में कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा अपनापन है, तो मुझे फौज में लोग टैनी कहते हैं, सीनियर जूनियर सब, कोई सर भी बोलता है तो टैनी सर बोलता है, तो दैट इज हाउ।
1: एंड यू एंजॉय इट, वी एंजॉय दीज नेम्स,
0: या या, बिकॉज़ दे आर सेड आउट ऑफ अफेक्शन, और कुछ फिर आदत बन जाती है,
1: आदत बन जाती है, एक अपनापन भी होता होगा।
0: एक अपनापन तो है, काफी अपनापन है।
1: तो ये जो फिल्म्स में हम देखते हैं जैसे टाइगर कॉलिंग बारहसिंगा, बारहसिंगा टू टाइगर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे।
0: हाँ, क्योंकि जब आप रेडियो पर खासकर बात करते हैं
1: जी,
0: तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं।
1: ओके,
0: तो टाइगर, लैम्ब, लायन, इस तरीके के होते हैं जो सेट होते हैं, और इसके बाद कुछ इंडिविजुअल नेम्स होते हैं।
1: ओके,
0: सो दीज आर कॉल साइंस बेसिकली।
1: कॉल साइंस, यस।
0: तो यस, दिस इज ट्रू, बट फिल्मों में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमरस कर देते हैं।
1: ग्लैमरस कर देते हैं, जी हाँ। मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ग्रुप कैप्टन मुनीश यादव को आमंत्रित किया था संदेश टू सोल्जर्स में, द पायलट हु फायर्ड एट द टाइगर हिल फ्लाइंग द मिराज 2000 अलॉन्ग विद ग्रुप कैप्टन रघुनाथ नाम्बियर। तो वो आए थे तो हम बताया, वो जो 25 या 26 सेकंड की जो क्लिप है यूट्यूब में जहाँ एयरफोर्स ने टाइगर हिल पे अटैक किया था लेजर गाइडेड बॉम्ब, तो मैंने उनसे पूछा था आपका कॉल साइन क्या है, तो हंसने लगे, बोले इट वाज टॉम कैट।
0: हाँ, एयरफोर्स में बड़े स्टाइलिश नेम्स होते हैं
1: जी, जी।
0: उनके कॉल साइंस आर क्वाइट स्टाइलिश, दैट वे वी आर ए लिटिल ग्राउंडेड।
1: तो कमिंग बैक टू गुलाम अहमद।
0: हाँ, गुलाम हसन,
1: गुलाम हसन,
0: गुलाम हसन, तो ये गुलाम हसन की कहानी है
1: जी।
0: जो कि वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम करता है
1: जी,
0: और किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है, ये वो कहानी है। उस इलाके में एक टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आ जाता है,
1: okay.
0: और वहाँ पर जो टीम कमांडर है वो उसको टास्क देता है,
1: okay.
0: कैप्टन अभिमन्यु, कि आप पता करें, और वो पूरी जी जान लगा देता है, और देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन द एंड अबाउट व्हाट हैपेंस टू गुलाम हसन। तो ये कहानी है, एक कहानी है मुजाहिद, जो एक बहुत यंग लड़के इम्तियाज की कहानी है, ये सूरनकोट की कहानी है, और इसमें जो मेन किरदार है वो इम्तियाज है, और दूसरा कैप्टन समर है। कैप्टन समर इम्तियाज को ट्रेन करता है, उसको पाकिस्तान भेजता है लश्करे तौयबा के साथ काम करने के लिए, और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। बट इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी टेंडर एंड येट ए वेरी करेजियस स्टोरी। फिर एक कहानी है लव जिहाद, लव जिहाद एक कहानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो हिंदुस्तान आता है घुसपैठ करके जिहाद के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको हंडवारा में एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है, और उसी वक्त वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं कर्नल ऋषभ, उनको ये सब बात पता लगती है, तो वो किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते को यूज़ करते हैं और किस तरीके से तीनों मिलकर फिर भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, ये उस कहानी का मेन प्लॉट है। तो आप पढ़ें कहानियाँ, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस।
1: लेडीज के हाथ में वो पावर होती है, दे कैन चेंज एनीबॉडी। आपके मैसेज के लिए तेलंगाना से एम आर मधुसूदन आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय, और हमारी कंट्री जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं।
0: मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं
1: जी। विजय कुमार विश्वनाथन जी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से हमें एक मैसेज भेज रहे हैं, संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों।

0: रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं केवल SMS, केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। नंबर है 9868107070, 9868107070। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, एंड दिस इज शमीम रजा। लोकेशन कहाँ से वो उन्होंने नहीं बताई, सो वी विल नॉट आस्क दैट। मिस्टर पाटिल ने हमें एक मैसेज भेजा है और उन्होंने आपके बचपन और शिक्षा के ऊपर जो बात पूछी है उसके बारे में आप बता ही चुके हैं। जय हिंद सर। सर मैं NDA की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नियमित रूप से पढ़ नहीं पाता, और NDA के लिए अगर कोई किताब आप मेंशन कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज बताएं। सूर्य कुमार हैं ये, कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: हाँ, जो NDA की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो 12th का सिलेबस होता है, रिटन एग्जाम जो UPSC कंडक्ट करती है, उसके लिए काफ़ी गाइड्स एंड काफ़ी केस पेपर्स आते हैं, तो मुझे तभी अंदाज़ा नहीं है। एक्चुअली मैंने तो NDA 25-30 साल पहले किया था, लेकिन आई विल चेक कि अभी आजकल लोग किस किताब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा सफलता किसमें मिल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर आप 11वीं और 12वीं का जो CBSE का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से करें तो शायद आपको NDA का रिटन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और NDA में रिटन एग्ज़ाम सिर्फ पहला पड़ाव है, क्योंकि मेन उसमें SSB होता है, तो अगर एक बार आप रिटन की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्लियर कर जाते हैं, तो देन SSB इज एक्चुअली ए टफर नट टू क्रैक।
0: ऑलराइट देन, यहाँ पे यश सिंधे मुंबई से हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील जी के जज्बे को सलाम, ऐसे वीरों को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, भारत माँ के सच्चे और वीर संतान हैं आप। सुशील जी आपकी सेवा और त्याग को नमन है, इस मुल्क की हिफाजत को मजबूत चट्टान की जरूरत है, वो आप हैं। ही इज ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ यू सर।
1: और मैं ये सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे क्या, पूरे हमारे जितने भी साथी हैं, हम सिर्फ इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि ये देश महफूज रहे, ताकि ये देशवासी खुश रहें। और जब हमारे देश के लोग इस तरीके का जज्बात जाहिर करते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है,
0: बहुत सारा।
1: और हमारा जो निश्चय है, वो दृढ़ संकल्प है, वो और मजबूत होता है।
0: दैट्स वंडरफुल। कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी से लेना चाहूंगा। आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश से, एंड शी इज वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्होंने भी NDA के एग्जाम दिए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। फायरमैन भरत कुमार चमोली गढ़वाल से लिख रहे हैं कि हमारा सलूट जो है वो स्वीकार करें, एंड ऑफकोर्स हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके खुद के दादा, पापा और 3 भाई आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तंवर जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गंगानगर जिला से डॉक्टर गणेश अरोड़ा हमारे को ये मैसेज भेज रहे हैं। हितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज भेजा है। सूरत से उल्हास पाटिल हमें मैसेज भेज रहे हैं, यू आर द रियल हीरो। वृंदावन से भी मैसेज आ गया रोहित रे का, एंड ऑफकोर्स इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक जनाब जिनका नाम है शशि सिंह यादव। एंड ऑफकोर्स एक और मैसेज हम लेना चाहेंगे यहाँ पे कि दिल से सलाम कर रहे हैं मोनीश इद्रिसी उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर से आपको। सो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो मैसेज भेज रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा है संदेश टू सोल्जर्स की। इससे पहले कि हम अगला म्यूजिकल ब्रेक लें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारी जो प्रेमी इंस्टीट्यूशन है वहाँ के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, कुछ आप बताइए कि जब आप नई जनरेशन के युवाओं को देखते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू सी कंपेयर टू द यंगस्टर्स इन योर टाइम?
1: हाँ, मैं भारतीय सैन्य एकेडमी जो देहरादून में है वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था जी। और बहुत गर्व महसूस होता है जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं, उनकी काबिलियत, उनका जुनून और हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर। बहुत ये बातें होती हैं कि नई पीढ़ी में कमज़ोरी है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते, उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर विद यंग पीपल यू योर सेल्फ फील यंगर। आपको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो कमाल की है। और जब आप एकेडमी में होते हैं तो आपको मौका होता है एज ए इंस्ट्रक्टर टू शेप देयर पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक दैट्स ए प्रिविलेज। और अभी भी जब हमारे जो कैडेट्स हैं, अब अफसर बन गए हैं सारे, जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है देख के कि हमने उनको we have seen their entire journey. They came as novices and now they are commanding battalions and doing so well. So it's always a pleasure to interact with you.
0: So aapka jo the process of dealing or teaching them or training them is as tough as your gurus were, or it's gone tougher, or you understand nahi yaar
1: usko? Dekhiye, ye jo hai debate hamesha rehti hai. Hame lagta hai ki humne zyada mushkil waqt jhela hai aur hamare baad wali, ab main peedhi to nahi bolunga, aisa lagega ki main bahut budda ho gaya hu, lekin
0: absolutely
1: fit. So lekin we are from the same generation, but I think this is everyone says ki we have seen tougher times, lekin mujhe lagta hai ki ye baat sahi hai, shayad humne zyada mushkilein jheli hai.
0: Okay, aapne ek song suggest kiya tha kuch aapki training times aur kuch aapke group se related, jo main chala chuka hu.
1: हाँ, ये कजरारे गाना है. जब हम आई एम ए में पोस्टेड थे तो हम यंग ऑफिसर्स, वी वर इंस्ट्रक्टर्स, तो हम ये गाना इतना चलाते थे दिन रात. तब ये नया नया गाना आया था और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मेरे दोस्त याद आ जाते हैं. एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग.
0: थोड़ी और याद ताज़ा करते हैं आपकी, ये गाना हम भी चलाते हैं और कुछ ताज़ी, उस समय की ताज़ी बात कुछ याद आ जाए तो आप शेयर करिएगा हमारे साथ. संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं. मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं ब्रिगेडियर.
2: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर.

0: एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ और ढेर सारे श्रोता जो हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं उनके नाम मैं बहुत जल्दी लेना चाहूंगा। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से कैप्टन वी के एस कर की IPS हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए। कोटा राजस्थान से राम गोपाल शर्मा जी हमें यहाँ मैसेज भेज रहे हैं। एंड ऑफकोर्स मीरा तिवारी नोएडा से कह रही हैं कि आपके बारे में, ब्रिगेडियर सुशील नंवर जी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल में थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था। दैट्स वंडरफुल टू नो मैम। आशा है कि आज की जनरेशन इनकी कहानी सुन के इंस्पायर हो और देश की इज्जत रखें और नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। हम भी यही आशा करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम सुशील जी से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं शंभवी पांडे। एंड ऑफ कोर्स वी आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ अदर मैसेजेस, जहां पर हमारे को सूर्य कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं, वो भी NDA ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली ने विशाखापट्टनम से 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं लिखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई किताब जरूर पढ़ूंगा और उन्होंने कहा है इंशाल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूंगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं। ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है। एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूंगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से, जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है, भुवन जोशी हल्द्वानी से हमें मैसेज भेज रहे हैं और तिरंगा भी उन्होंने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ जब हमने ये गाना सुना, खैर मैं फोकस कर रहा था मैसेजेस पे, वील गेट बैक टू इट लेटर, आप हमने बात की कजरारे की, तो वर यू ऑल्सो वेरी नॉटी जब आप एकेडमी में थे, कुछ आपने मिस्चिफ विस्चिफ नहीं की तब?
1: हाँ, मिस्चिफ तो हर इंसान करता है मेरे ख्याल से।
0: ओके,
1: हमने भी किए, सबने किए।
0: ओके,
1: शायद लेकिन उतने नहीं किए जितने अब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा और करना चाहिए था।
0: ओके।
1: लेकिन आज आप लगता है सारे राज खुलवाने की ठान कर आए हैं।
0: अच्छा लगेगा ना, सिविलियन, देखिए सिविलियन को लगता है कि आर्मी के जवान हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो अफसर हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कभी मीठा नहीं बोलते, आप तो मिश्री हैं। अनुराग पांडे एक रेडियो जॉकी हैं AIR मथुरा में, वो एक मैसेज भेज रहे हैं और ही इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तो हमारी सिविलियंस की थोड़ी सी वो बदल जाएगा ना कि आपकी उस यू नो सॉलिड बॉडी के अंदर भी एक विनम्र सा दिल है।
1: हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फौजी जो होते हैं वो बहुत नरम दिल होते हैं।
0: ओके,
1: इनसाइड द सॉफ्ट एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर इज अ वेरी सॉफ्ट इंटीरियर, और जब आप लोगों से मिलते हैं तब उनको अंदाजा होता है, तो शरारतें तो लाजमी हैं।
0: पर आप लगते नहीं सर कि आपने शरारती की होगी।
1: नहीं, जैसे आप वाकये की पूछ रहे थे
0: जी,
1: तो मुझे याद है हम यंग ऑफिसर थे।
0: okay.
1: तो वेरी ब्रीफली
0: माऊ
1: में हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे। उस टाइम टाइटैनिक मूवी आई थी।
0: okay.
1: ओपन एयर थिएटर है, बहुत मज़ेदार, वहाँ पर बहुत मस्ती होती है ओपन एयर थिएटर में माऊ के इन्फेंट्री स्कूल में। तो जब टाइटैनिक में वो शिप डूबने लगा तो किसी ने बोला यार कुछ ये शिप डूब रहा है तो हम भी कुछ करते हैं, तो मैं चुपके से हम लेके गए थे एक पटाखों की लड़ी।
0: ओके,
1: तो बाकी तो कोई गया नहीं, मैं गया और जैसे ही मैंने वो लड़ी जलाई, उजाला हुआ, उधर शिप डूब रहा था और उधर सबको पता लग गया कि ये भाई साहब जो हैं, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक DS थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए, और वो पटाखा सीधा उनकी झोली में जाके गिरा, शायद बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे से मुझे आए कि आप जरा बाहर आइए।
0: बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था,
1: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज्यादा जिंदा दिल थे ऐसा मुझे लगता
0: पर
1: है।
0: हुआ क्या उसके बाद?
1: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी, पर यह हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया।
0: okay.
1: तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देयर वाज नो इल विल। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
0: टैनी द क्रैकर बॉय,
1: यस,
0: ऐसे बुलाते होंगे आपको?
1: हाँ, मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
0: राइट, यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे, बहुत सारे लोग परचेज करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड दी इंसिडेंट्स एंड दी एक्सपीरियंसेस।
1: हाँ, तो पहली किताब है मुखबिर जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते, ये दोनों किताबें हिंदी में हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हैं और राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की हैं।
0: राइट देन, राजकुमार पाल यूपी जौनपुर से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, वो आपको सलाम भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी बहादुरी और राष्ट्र सेवा को सलाम। मैं हरियाणा पुलिस में एक सिपाही हूँ लेकिन हमारी सीमाएं आप जैसे वीरों की वजह से सुरक्षित हैं। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ मस्त और व्यस्त रखें, रामधारी अवाना। और ये किस जगह पे हैं वो सिक्योरिटी कारण से हम लोग नहीं बता सकते, बट साथ ही साथ कश्मीर से एक मैसेज आया है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, एंड केश राजपूत है, वो एक मैसेज भेज रहे हैं। मेरे पास लगभग 12 मिनट बचे हैं सर, कैन वी डू सम टफ टॉकिंग?
1: या श्योर।
0: ओके, नाउ दिस इज द रियल टॉक सर, इसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, अवेयरनेस हुई, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ऑफकोर्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशन, कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही होगी।
1: हाँ, आप अखबार में पढ़ते हैं और पब्लिसाइज भी होती है कई चीज़ें।
0: ओके,
1: और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं।
0: ओके,
1: नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स और बाकी प्रिसीजन वेपन्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका आउटलुक भी चेंज हो रहा है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ नैरेटिव, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए।
0: मुझे ये बताइए, अभी जैसे ईरान, अमेरिका, इसराइल को लेके जो भी वहाँ पे कॉम्बैट हो रहा है, या कहीं पर भी विश्व भर में यूक्रेन, रशिया को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर भी हमारे कोई ना कोई इंटेलिजेंस, यू नो, कोई टैप तो रखते होंगे ना कि क्या क्या वेपन यूज हो रहा है, कौन सा वेपन कहाँ काम आ रहा है, कितना यूजफुल है, नहीं है। Am I right to mention like that?
1: Yes, because armies all over the world, ये नहीं कि सिर्फ हमारी सेना, but wars कैसे लड़ी जा रही हैं उसकी study करना बहुत ज़रूरी है, so that we can refine our tactics, we can refine the way we use our weapons. तो this is an ongoing process. और सेना में लोगों को लगता है कि जब लड़ाई नहीं हो रही तो क्या कर रहे होंगे, जब हम लड़ाई नहीं हो रही थी तो हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं और उस तैयारी में ये सब study करना भी शामिल है।
0: ओके सर, मैंने आपसे बोला था मैं सीधे सवाल सिविलियन के पूछूंगा आपसे। 24 घंटे हम लोग चौकन्ने हैं बॉर्डर पे, अपनी स्काइज को देख रहे हैं कि कोई वहां से कोई वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा।
1: हाँ, ऑब्वियसली, आई मीन ना सिर्फ स्काई, टुडे थ्रेट इज फ्रॉम एवरीवेयर।
0: ओके,
1: एंड जहाँ तक आपने जंग की बात की, मैं ये भी बोलूँगा कि इट्स नॉट आर्मीज विच फाइट ए वॉर, इट इज़ द नेशंस विच फाइट ए वॉर। तो हम सब चौकन्ने हैं, हम सबको चौकन्ना रहना भी चाहिए।
0: तो आपकी इंटेलिजेंस 24 घंटे काम करती है। कुछ देर पहले आपने कहा कि हमारे भी कुछ लोग जो हैं सरहद पार जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आते हैं, हमारे भी जाते हैं, बट लेट मी टेल यू दैट वी आर नॉट बॉर्डरिंग द वेस्ट, वी आर बॉर्डरिंग 360 डिग्री, हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि थ्रेट हमें एक ही कंट्री से, या हमें चौकन्ना नहीं होना बाकी जगह। तो हर जगह का पैटर्न अलग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि भाषाएं अलग हैं, टेक्नोलॉजी किसी के पास सुपीरियर है, किसी के पास नहीं है।
1: देखिए, एडवर्सरीज डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, ज्योग्राफी डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो थ्रेट्स भी डिफरेंट हैं, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज भी होती हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, अब ये ज़रूरी है कि हम उन डिफरेंट पैटर्न्स को समझें, तो इसीलिए हर तरफ देखना पड़ता है।
0: इज़ इट ईजी टू प्रिपेयर द स्पाइज और यू नो पीपल इन द इंटेलिजेंस, हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इट इज़ किसी भी कंट्री के लिए?
1: इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ डेंजरस, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
0: एक टफ सवाल पूछ लूं सर?
1: पूछिए, आप टफ ही सवाल पूछ रहे हैं।
0: आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा। जब हम कहते हैं हमें इंटेलिजेंस चाहिए, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू आर ओन कंट्रीमैन, इट कैन एक्सपैंड टू वेरियस अदर नेशनैलिटीज आल्सो, इज दैट ट्रू सर?
1: हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं रोज दुनिया में क्या हो रहा है
0: जी,
1: हर जगह कोई ना कोई एजेंट पकड़ा जा रहा है, सो यू यूज ऑल मींस एट योर डिस्पोजल।
0: राइट, एक रसगुल्ला खिलाने का मन कर रहा है आपको, कोई भी प्यार व्यार नहीं हुआ सर? यू वर नेवर रोमांटिक इन योर लाइफ?
1: देखिए, हर इंसान रोमांटिक होता है।
0: आप भी थे?
1: थे नहीं, हैं लेकिन लेकिन किस मद्देनजर किस मायने में है वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट।
0: देश से बहुत प्यार है, माय फर्स्ट लव। ठीक है सर, आपने गाना अपनी प्लेलिस्ट में

0: हमें दिया है, बाहों में चले आ, इसका क्या रीजन है?
1: हाँ, ये पुराना गाना है अनामिका पिक्चर का, मूवी का,
0: कोई ना कोई तो रीजन होगा सर।
1: हाँ, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये गाना।
0: थी सर?
1: हाँ थी, और वो गाती भी थी ये गाना, और मैंने आपको बाकी गाने भी दिए हैं जो बाकी दोस्तों के हैं, लेकिन आप इसी गाने को पकड़ के बैठ गए हैं। हाँ, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, तो इसको प्लीज सुनवाइए
0: सर। वो जो लव स्टोरी थी वो

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली और एक और गाना है जिसकी ख्वाहिश यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखी है और वो गाना बड़ा सॉलिड है, मिक्का सिंह का. व्हाट अबाउट दिस? आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग क्लोज, यू नो, एट द ब्रिंक ऑफ द आवर टू क्लोज दिस शो, बट व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस सॉन्ग सर? एकदम से मतलब पुरानी और फिर नया दिल में बजी गिटार.
1: नहीं, जब आपने मुझे बताया कि आप पसंदीदा गाने बनाएं
0: जी
1: बताएं, तो फिर एक मेरे अच्छे दोस्त हैं
0: जी
1: और हम दोनों मिलके गाना बहुत एंजॉय करते थे.
0: ओके.
1: तो बस सुनी की याद आ गई और उन्होंने बोला ये गाना अगर नहीं बजेगा तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा.
0: सर आप परफेक्ट बंदे हो इंटेलिजेंस के लिए, सारी बातें बोल देते हो पर कुछ भी नहीं बोलते. मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अगर नहीं बजेगा तो बाहू में चले आओ, चलाया था कि बहुत अच्छा लगता था. पहला नशा चलाया क्योंकि वो अच्छा था, कजरारे डांस करते थे बस, वो बताया आपने कुछ भी नहीं, यू नेवर रिवील्ड, बट आई थिंक इंडियन आर्मी ने सही बंदे को चूज किया सर इंटेलिजेंस के लिए.

0: समय ना हमारे पास बहुत कम है। क्या होता है ना, जब हम अपने फौजी भाइयों के साथ, फौजी अफसरों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, हमें लगता है कि एक घंटा बहुत कम है, अब बातें और होनी चाहिए। बट यू आर बीन हर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यू आर बीन हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आए हैं। सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब यहाँ से आपका सफर कहाँ जाता है, वेयर डू यू टेक योर सेल्फ फ्रॉम हियर?
1: हम तो फौज में कुछ कह नहीं सकते कि अगला मुकाम, अगला पड़ाव क्या होगा। तो जहाँ भारतीय सरकार, भारतीय सेना में भेजेगी, वहाँ जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि वापस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, उसी शिद्दत, उसी जुनून।

0: वो एक कहावत थी ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इज देयर इन कश्मीर, कुछ अलग बनाता है आपको. आपको प्यार हो गया उस जगह से, आप गए थे भारत माँ की रक्षा करने, आप रक्षा भी कराए और वहां अपना दिल भी दे आया कश्मीर को.
1: नहीं दिल, हाँ दिल की तो बात है, जम्मू कश्मीर मुझे पसंद है, लेकिन जहाँ पर भी मैंने राजस्थान में नौकरी की है, मैंने अब्रॉड नौकरी की है, यूएन के साथ नौकरी की है, वहाँ भी अच्छा लगा. तो इट इज़ नॉट द प्लेस एक्चुअली, इट इज़ द पीपल अराउंड यू एंड हमारा जो एक इकोसिस्टम है भारतीय सेना का, वो बहुत मज़ेदार है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है.
0: आपने बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं अलग अलग नेशंस के, डिड विद द यूएस.
1: हाँ हमारे साथ जापान में मैंने गया हूँ, मैं यूके गया हूँ, मैंने सूडान में नौकरी की है यूनाइटेड नेशंस के साथ, और जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर भारतीय सेना को एक अलग तरीके से देखा जाता था, बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था, बहुत प्राउड फील होता था, बहुत गर्व महसूस होता था हमारे को दूसरे देश में जाके हिंदुस्तानी सेना का नाम रोशन करने में. इट वॉज एक्चुअली ए ब्लेसिंग.
0: तो अभी चलते चलते, क्योंकि अब समय की पाबंदी है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, आपके फाइनल वर्ड्स, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है.
1: ये जो भारतीय सेना एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस देश की सेवा करें, एंड हमारे सैनिक, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी ब्रेव वेरी करेजियस सोल्जर्स, और जो हिंदुस्तानी सेना और तीनों सेनाओं का मैं बात करूंगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स की एंड ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस, आई थिंक वी जस्ट सर्व सेल्फलेसली, और हमें उम्मीद है कि इस देश और इस देश के नागरिक भी उसी शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे जैसे हम करते हैं.
0: इट्स अ शेयर प्रिविलेज टू होस्ट यू सर.
1: It was extremely good, and the way people were reacting, I think it just motivates us even more. बहुत मजा आया.
0: There are so many जिनके मैं messages नहीं ले पाया, but the Brigadier Sushil Tanwar जी, I think जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देश की तरफ से, ये मेरा salute कबूल कीजिए सर.
1: Thank you so much. जय हिंद.
0: और इसी तरह हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे संदेश टू सोल्जर्स में.

क्या बात है, उड़े दिल बेफिक्रे, वाह भाई वाह। ऐसे गाने अगर हम सुने तो सच में यही इच्छा होती है कि हमारा भी दिल बस ऐसे ही उड़े, वो भी बिना किसी फिक्र के। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और आप सुन रहे हैं आपकी सखी आरजे रिद्धि की आवाज, ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। और हमारा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम, यानी मेरा तो बड़ा फेवरेट कार्यक्रम है, लव यू जिंदगी शुरू हो चुका है। और हर बार हर मुद्दे पर जब मुझे बोलने का मौका मिलता है कि भाई जिंदगी आई लव यू यार, तो फिर क्यों मैं इस बात को, इस टॉपिक को छेड़ने से रुकूं। लव यू जिंदगी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज सबसे पहले मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहती हूं, आपकी फेवरेट बुक यानी किताब कौन सी है? कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी भाषा हो सकती है, कोई भी जॉनर हो सकता है, पर क्या कोई किताब है जो आपकी फेवरेट है? तो मुझे अभी उस किताब का नाम भेजिए, देखते हैं कौन कौन सी बुक पढ़ी है आपने अभी तक, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसका जो जवाब मिलेगा ना मुझे, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए सुनते हैं एक और मज़ेदार गाना।

किताबें वो दोस्त है जो बिना स्वार्थ के साथ देती है। हर पन्ने पर नया संसार मिलता है। अब ऐसा तो सबके साथ हुआ होगा, अगर हम खुद से या फिर कहो किसी ने हमें कोई बुक गिफ्ट कर दी हो, या कभी इच्छा की हो कि यार चलो कोई किताब पढ़ते हैं, तो उस हर पन्ने पर आपको कुछ नया ही मिलेगा, चाहे फिर कोई नया शब्द हो, नया मतलब हो, नई सीख हो, नई कहानी हो। कहते ना कि जिस घर में किताबें होती है वहां अंधेरा कभी नहीं होता। अरे क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप अंधेरे से बचने के लिए एक ऐसा साथी, एक ऐसी चीज से दोस्ती कर रहे हो, किताबों से दोस्ती कर रहे हो, क्योंकि किताब एकमात्र एक ऐसा दिया है जो अपने लिए कुछ नहीं करता।

दूसरों को देता आया है। अब मानो ऐसा दोस्त मिलता है आजकल बिना किसी खर्च के, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी कंडीशंस के। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमारा ये फ्रेंडशिप वीक चल रहा है, जहाँ सबके अपने अपने तरीके होते हैं एक दूसरे की दोस्तों को फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करना, विश करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो किताबें हैं जो इतना कुछ कहती है, ये भी तो हमारी मित्र ही है, ये भी तो हमारे फेवरेट बेस्टीज़ की कैटेगरी में आती है, वो भी बिना किसी शर्त के। चलो तो फिर आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है ना, इस सबसे अच्छे दोस्त किताब के नाम है। जल्दी जल्दी मुझे ये बताइए कि आपने अपनी फेवरेट बुक्स यानी अपने कौन से दोस्त से क्या सीखा है। चलिए तब तक एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

क्या बात है, मतलब मुझे तो इतनी सारी बुक्स के नाम और उनके लेखकों के नाम आए हैं। तो दत्तात्रेय आड़त जी कहते हैं कि उन्हें गोदान हिंदी की जो किताब है पसंद है। अजय साखरे जी कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान फिर से। यशवंत आड़मुटे छावा जिन्हें लिखी है शिवाजी सावंत जी ने। अरविंद कुलकर्णी कहते हैं मराठी पुस्तक मृत्युंजय। अशोक पाटिल जी कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर उन्हें बेहद पसंद है। प्रणव शिंदे जी कहते हैं श्यामाची आई साने गुरुजी द्वारा लिखित ये किताबें इन्हें बहुत पसंद है। और भी हमारे लिसनर्स हमें नाम के साथ पुस्तकों के बारे में बता रहे हैं। देखिए मुझे बड़ा आनंद आता है क्योंकि कुछ किताबें मैंने भी पढ़ी हुई है, तो यू नो वी कैन रिलेट के हाँ यार ये क्यों पसंद आई होगी। और कुछ किताबों के नाम इस बहाने मिल जाते हैं कि यार रिद्धि तुझे ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर ये कह रहे हैं तो, क्योंकि किताब ही तो है भाई, ये आपसे कुछ नहीं मांगते, ना इंटरनेट मांगते हैं, ना चार्जिंग के लिए आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, बस एक किताब साथ में हो और वो अपना जो उसका रोल है, किताब का जो रोल प्ले है एज अ गुड फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड, वो निभाते जाता है। तो क्या बात है, बस ऐसे ही अच्छे गाने की शुरुआत हो चुकी है तो और सुनते हैं एक और प्यारा गाना। नसीला, नसीला तेरा नैना।

हाँ भाई हाँ, हम भी बहुत सारे ऐसे किताबें हैं, ऐसे पन्ने हैं, ऐसी कहानियां हैं जिसके हम जबरे फैन हो गए हैं। कहते हैं ना कि इंसान बदल जाते हैं पर किताबों के पन्ने हमेशा वही रहते हैं। जब दुनिया समझना बंद कर दे, किताबें हमेशा हमें समझती हैं। कैसे? मैं सिर्फ उन किताबों की बात नहीं कर रही हूँ जिन्हें हम पढ़ते हैं, मैं किताबों की बात कर रही हूँ, उन खाली पन्नों की बात कर रही हूँ, उस खाली किताब की बात कर रही हूँ जिसमें हम अपने मन की बातें लिखते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना कि यार मैं अपनी जो कहते हैं ना कुछ पर्सनल बातें हैं, पर्सनल इमोशंस की बातें हैं जो हम हर कहीं नहीं बोल सकते, हर किसी को नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं, हम डायरी बनाते हैं, हम बुक में लिखते हैं, तारीख लिखेंगे, उस दिन के जज्बात लिखेंगे, उस दिन का पूरा वाक्य लिखेंगे, कहानी लिखेंगे। और कई बार ऐसा होता होगा कि जब कुछ समय बीत जाने पर पुराने पन्नों को पलट कर देखते हैं तो या तो फिर उस कहानी को सुनकर हंसना आता होगा या फिर उस कहानी को पढ़कर रोना आता होगा कि उस दिन उस तारीख को उस साल ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ था। थैंक्स टू बुक्स, थैंक्स टू माई लवली डायरी जो मेरी बेस्टी बनी जब मुझे कोई समझना नहीं चाह रहा था, या यूँ कहूँ कि मैं किसी को समझाना नहीं चाह रही थी, तब उस किताब ने मेरा साथ दिया। आप ट्रैवल कर रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है। अच्छा एक और बात, अगर नींद ना आए तो उसका सबसे अच्छा बिना दवाइयों वाला इलाज तो आप सबको पता ही होगा, जैसे किताब हाथों में अगर आप ले तो ढपकियाँ आना शुरू हो जाती है। तो देखो भाई, यहाँ भी तो किताबों ने साथ दिया ना, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह आपको सुलाने का काम किया। तो हमेशा ऐसे ही साथ निभाती आई है ये किताबें, बिना किसी चार्जिंग के, बिना किसी इंटरनेट के। अब ये बात तो हमें समझना है कि हम हमारे जीवन में कैसे दोस्त बनाएं, और कैसे बनाएं वो आप पर निर्भर है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि किताबों को ज़रूर दोस्त बनाएं। क्यों?

क्या बात है, मुझे बहुत सारे हमारे लिसनर्स ने बातें अपनी बताई कि हाँ भाई, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किताबें लिखते हैं, डायरीज लिखते हैं, और सबका अपना अपना एक तरीका होता है ना। और हाँ, तरीके से बात याद आई कि फिर से बता दूँ, हमारा प्रोग्राम लव यू जिंदगी चल रहा है और आप सुन रहे हैं आपकी सखी आरजे रिद्धि की आवाज़। कुछ लिसनर्स हमारे अभी जुड़े हैं तो उन्हें थोड़ी सी मेरे बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हम बात कर रहे थे किताबों की, बुक्स की, डायरी की, कि भाई ये जो पत्ते होते हैं, ये जो किताबें होती हैं, हमारी एकमात्र ऐसी सीक्रेट बुक होती है, ऐसा सीक्रेट फ्रेंड होता है जिसे हम जब चाहे तब बुला सकते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरे यार, मेरा दोस्त सो रहा होगा, क्या वो मेरे साथ कहीं चलेगा, क्या वो मेरी बातें सुनेगा। अरे भाई, किताब बोलती है, हाँ हाँ बरखुदार, मैं सुनूंगा आपकी बातें। आप अपने मन की सारी बातें कलम की मदद से मुझ पर लिख दो, मैं वो सारी बातें संजो कर अपने दिल में रखूंगा। मेरा दिल बड़ा बड़ा है, मेरा दिल छोटी छोटी बातों में नाराज़ नहीं होता, मैं कोई शिकायत भी नहीं करूँगा, लेकिन आप दिल खोल कर अपनी बातें मुझसे साझा कीजिए। जो हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने भी यही बातें बताई कि मुझे मराठी किताबें पढ़नी बहुत पसंद है, मुझे हिंदी किताबें पढ़नी बहुत पसंद है, किसी ने मुझे बताया कि मुझे अंग्रेज़ी किताबें पढ़नी बहुत पसंद है, क्योंकि सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है, एक जॉनर होता है। क्या पता हम कौन सी लाइन से, कौन से ऑथर से रिलेटेबल फील करें और बस वो हिट ऑफ द मोमेंट हो जाता है कि भाई मैं तो इससे कनेक्ट करता हूँ, मुझे इनकी सारी बातें पसंद आती है। तो बस यहीं पर मैं तो कहूँगी कि हमारा सबसे प्यारा अजीज दोस्त, हमारा कहते हैं ना सबसे दिल का, दिल के सबसे पास रहने वाला मित्र, हमारी किताबें, हमारी बुक्स को इस फ्रेंडशिप डे पर, इस फ्रेंडशिप डे के वीक पर, इस हर दिन तो फ्रेंडशिप डे ही है क्योंकि हर दिन वो किताबें हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही है, अपना काम करती है। तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और किताबें तो भाई होनी ही चाहिए ताकि दोस्ती पक्की बनी रहे। तो इन्जॉय कीजिए, हमारा कार्यक्रम लव यू जिंदगी यहीं पर समाप्त होता है और आगे आप सुनेंगे अंदाज़े बयां में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें।

क्या बात है, ये पहला गाना ही हमारा जो प्रोग्राम है अब अंदाज़े बयां शुरू हो चुका है और पहले गाने से ही हमें पता चल गया कि वाह भाई वाह, कागज़ के दो पंख अगर लग जाए तो हम तो सच में उड़ना चाहेंगे। हम बात कर रहे थे लव यू जिंदगी में किताबों की दोस्ती के बारे में और अंदाज़े बयां में हम जहाँ हमारा जो एक अंदाज़ बनता है, हमारा जो बातचीत करने का एक तरीका बनता है, हमारे अंदर जितनी भी जो कहते हैं ना कि स्किल्स डेवलप होती है उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है किताबों का, ये तो हम सभी मानते हैं। भले आप उस किताब की 4 लाइन पढ़ो या 40 लाइन, पर जरूर उस किताब से कुछ ना कुछ सीखते हो। तो एक बहुत ही प्यारी कविता मेरे हाथ लगी है, इसके रचनाकार है सफदर हाशमी, इनकी पुस्तक है दुर्वा भाग 2 और ये लिखते हैं कि किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? तो अंदाज़े बयां का कार्यक्रम हमारा ऐसे ही चालू रहेगा और आप सुन रहे हैं आपकी सखी आरजे रिद्धि को और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, तो एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अंदाज़े बयां कार्यक्रम चल रहा है और हम बात कर रहे हैं उन किताबों के बारे में। और मैंने जो इससे पहले पढ़ी कविताओं की कुछ पंक्तियां, इन किताबों की बातें आप सुनना चाहोगे क्या? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान क्या भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। क्या क्या खूब लिखा है हाशमी जी ने। और सच में यहाँ पर ये बात हो गई कि किताबें भी हमें कुछ कहना चाह रही है। हमने जब लव यू जिंदगी के बारे में बात की थी तो हम अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते थे, हमने हमारा साथीदार चुना किताबों को, बट जब ऐसी कविताएं आती है कि किताबें भी हमें हमारा दोस्त बनने के लिए इच्छुक है, हम वो चाहती है कि हम उनके दोस्त बने, उनकी बातें सुने, उन्होंने जो इतनी सारी जानकारियाँ हमें दी है वो हम पढ़े और उनके साथ एक संबंध सा बनाए कि भाई हाँ, मेरी बात तू सुन, तेरी बात मैं सुनूँ। तो हमारा कार्यक्रम चल रहा है अंदाजे बयां, और मैं आपको बता दूं 6:45 पर हमारा एक प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस शुरू होगा, और इसी के साथ एक और खूबसूरत गाना आपके लिए पेश है।

0: Bring you a talk on senior citizens, care, system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shahron mein ho, uske prati jagrukta karni ho ya policy makers, NGOs, civil society या wider society को इसमें integrate करना हो, एक broad picture कि भारत धीरे से ही सही पर aging tsunami की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बेहतर medical सुविधाएं और जो longevity है उसकी वजह से जो life expectancy है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है. यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए कि ये बोन बनकर आ सकता है. हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं. 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं. 58% से ज़्यादा महिलाएँ जो 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है. ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं. वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियां भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं. कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था जो बेगरी करते हैं काफ़ी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएँ, वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं. फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज़ ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है. उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनके

चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है, जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के, तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द जरूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं, और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है, उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज़ है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं, एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो वो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर अपनी वसीयत बनाएं, अपने नाम पे

0: सेविंग्स रखें और चीजों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज वेलफेयर Awareness and Strengthening Access to Justice from the webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice.
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं? तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने जरूर बात करना चाहूंगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स, स्वयं की जिम्मेदारी लेना समय पे, जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना, सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना, जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना, और जो ग्रासरूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है आने वाले समय में। डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति, और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं, और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाती हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन, और उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, CCTV या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए, और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं, और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिला

0: का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स वुमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में। एक और वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली ने हमारी संस्था अनुग्रह, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलके भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडिया फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज एन एज फ्रेंडली इंडिया एंड एज फ्रेंडली सोसाइटी। एंड स्पेशली आई वुड से यूथ has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You had been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, founder, secretary and chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the department.

क्या बात है, गाने इतने सुंदर है और मैं तो कहती हूँ मुझे उससे क्या, मुझे किताबों से प्यार हो गया। मुझे लगता है आज का हमारा पूरा शो जो था वो किताबों के इर्द गिर्द था, और किताबें यानी अपने आप में एक पूरा संसार है। जब हम तुम कार्यक्रम की भी बात करते हैं तो हम तुम में हम हमारे लिसनर्स जो हमारे एक तरह से मित्र ही है, जो सुनकर हमसे जुड़ते हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे लिसनर्स हैं FM रेनबो मुंबई के, तो वो उनकी ख्वाहिशें कहते हैं, लिखते हैं और हम गाने प्ले करते हैं। तो सच में ये हम तुम का कार्यक्रम एक दोस्ती की तरह है कि आप कहो हम गाना बजाएं। हम तुम कार्यक्रम में अपने गाने की रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8657666610 पर दे सकते हैं। मैं दोबारा से कहूँगी 8657661071। तो कार्यक्रम से जुड़े रहिए और मैं आपकी सखी आरजे रिद्धि आपके साथ यूं ही इन गानों का लुफ्त उठाती रहूँगी।

0: क्या बात है, इतने खूबसूरत गानों की लिस्ट आ गई है मेरे पास। और हमारे लिसनर्स ने जो ये रिक्वेस्ट भेजी है उनके नाम है पंकज मोहर, दीपा पालकर, विजेंद्र घटोल, अजय साखरे जी, विठल जी, राम प्रजापति जी, राकेश जी, चेतन कुमार जी, सुनील गायकवाड़ जी, और यही सारे प्यारे प्यारे गाने हम सुनते रहेंगे।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

आप सुन रहे हैं हम तुम कार्यक्रम और आपकी सखी आरजे रिद्धि का अब विदा लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन गानों का सिलसिला ऐसे ही चालू रहेगा जहां अलग अलग गानों में अलग अलग भाव में। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा जो बातचीत करने का जो दौर था, जो थीम था, किताबें, दोस्ती और उस दोस्ती और प्यार और किताबों के अनजान संसार में जो हमने डुबकी लगाई है, जो इतने प्यारे प्यारे गाने हमें मिले हैं, तो आज के लिए अभी के लिए आपकी सखी आरजे रिद्धि विदा लेती है। और उसी के साथ आप गानों को एंजॉय करना मत छोड़िए।

क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है।

0: और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
2: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। यह 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
3: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
4: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल है जिन पर पाकिस्तान

0: ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा हैं।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
2: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
3: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
4: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
3: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
1: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
5: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
1: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। विशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
1: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के

प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुछ रिश्ते ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्फाज कम पड़ जाते हैं और खामोशियां आपस में बातें करने लग जाती हैं। कभी किसी अपने का साथ बेहद सुकून देता है और यूं लगता है कि बरसों से रुके हुए आंसू भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। मोहब्बत का असल एहसास शायद वही है जहां दिल को किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक कंधा ही काफी होता है, उसका देख भर लेना, उसका ये पूछ लेना कि कैसी हो, इतना ही बहुत है दिल को सुकून लाने के लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम है रंगे महफिल।

बस इतनी बात थी, कहते तो हम तरमीम कर लेते। बस इतनी बात थी, कहते तो हम तरमीम कर लेते। सफ़र को बांट लेते हम, थकन तकसीम कर लेते। अगर हमसे शिकायत थी तो फिर इजहार करना था। अगर हमसे शिकायत थी तो फिर इजहार करना था। माफ़ी मांग लेते हम, ख़ता तस्लीम कर लेते।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम।

0: फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: एक बार फिर आप तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, क्योंकि ये जो कारवां है मोहब्बतों का, ये अभी ऐसे ही रवा दवा रहेगा।

तुम्हें क्या लिखूं, दोस्त लिखूं, हमदम लिखूं, गमगुसार लिखूं या प्यार लिखूं। दिल कहता है दुनिया के तमाम खूबसूरत अल्फाज को यकचा करके, इकट्ठा करके एक प्यारी सी बात लिखूं। और वो बात क्या है कि बस तुम ही हो मेरे साथ, बस तुम ही हो मेरी कुल कायनात।

तो जनाब अली, ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि आप जो कहना चाहते हैं, आप जो सुनना चाहते हैं, वो कहाँ सुन पाते हैं। ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के साथ साथ न जाने ऐसे कितने एहसास हमारे अंदर ही मर जाया करते हैं। ऐसे न जाने कितने एहसास जिन्हें हम अल्फाज देना चाहते हैं, और फिर हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और उनमें कोई ख़ास भी होता है जिन्हें आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन अफसोस कह नहीं पाते। यूँ लगता है कि काश वो समझ जाए, काश उसे एहसास हो जाए।

आधी रात के 12 बज चुके हैं और अब समय होता है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत सिंगापुर विदेशी कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ। कोयला मंत्रालय के अनुसार जुलाई में कोयला उत्पादन और प्रेषण बढ़ने से देश में बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति पर्याप्त रही। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा को कंप्यूटर पर आधारित बनाने पर केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 12:03 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक जीरो आवर शो में, यानी कि सिर्फ बिना रुके गानों को आप एंजॉय करेंगे। और इस समय आधी रात हो चुकी है तो गानों की दुनिया में आप ऐसे ही खो जाइए। तो शुरुआत करते हैं तमाशा मूवी के इस गाने के साथ एआर रहमान की आवाज में। ये सॉफ्ट गाना एंजॉय कीजिए और ऐसे ही गानों की दुनिया में खो जाइए।

0: σε τέρι πολύ.
1: आए हाय
0: तेरे तेरे ची नजर में है जादू.
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था.
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो. अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है.
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर.
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है.
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं.
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या.
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए.
4: समय समय पर

0: सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और टाइम हुआ है रात के 12:56 और जीरो आर शो में नॉनस्टॉप गानों का आप मजा ले रहे हैं, तो ऐसे ही गानों का मजा लेते रहिए। कमिंग अप अरिजीत सिंह की आवाज में फ्रॉम द मूवी जीनियस।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: 생각.
1: आई होप आपको मजा आ रहा होगा गानों का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और शो का नाम है जीरो आर शो, जिसमें नॉन स्टॉप गानों का मजा ले रहे हैं। और अभी इस शो का टाइम 1 बजे पूरा हो जाएगा, और लेकिन तब तक आप सुनिए अभी अनुपम रॉय की आवाज में पीकू फिल्म से ये गाना।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। देशवासियों ने कम से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित होगा। द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किए। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने पर केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालीहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रात्रि के 2 बज चुके हैं और अब आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर सुनिए मुख्य समाचार। आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किए। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल को सुन रहे हैं आप। रात के 2:03 हो चुके हैं और अब ये टाइम होता है भुलाए ना बने शो का, जिसमें आप सुनते हैं वो गाने जो आप कभी पुराने जमाने में सुनते होंगे, और मतलब ज्यादा पुराने भी नहीं, लेकिन उन गानों का मजा अब दोबारा से आप लेंगे नॉन स्टॉप इस आधी रात में। तो इन गानों की दुनिया में आप खो जाइए और स्टार्ट करते हैं माचिस मूवी के इस गाने से।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2:00

0: बजे रेनबो पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 2:30 और आप सुन रहे हैं शो भुलाए ना बने, जिसमें आप वो गाने सुन रहे हैं जो आप कभी भूल चुके थे लेकिन वो गाने आपके फेवरेट थे, हैं और रहेंगे। अभी ये जो गाना आपने सुना ये था कुणाल गाजियावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में यूं होता तो क्या होता मूवी से, और अब आप सुनिए रंजीत बरोट की आवाज में फ्रॉम द मूवी रूबरू। और ऐसे ही नॉन स्टॉप

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं अब तक के मुख्य समाचार। आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा

दिवस का मुख्य समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। देशवासियों ने से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किए। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ और तन्वी शर्मा, अस्मिता चालीहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आप जुड़े हुए आकाशवाणी एफएम रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है अगले हमारे प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है और अब सुनिए हिंदी में मुख्य समाचार। आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक

2026 पारित किया। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किए। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4:03 हो चुके हैं और जैसे कि आप रात के 12 बजे से नॉनस्टॉप गाने सुनते ही हैं, वो भी बिना किसी ज्यादा बातचीत के। तो चलिए इसी तरह अब शुरू करते हैं गानों का सिलसिला। शो का नाम है सारेगामा। तो सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में शुरू करते हैं इस गाने के साथ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

सड़कों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।